وأجمل منك لم تلد النساء.

0: FM 100's time check. It's 7 a.m.
1: जरा बहन, जरा बात तो सुनो। हटो पीछे, भागो।
2: अहमद, हटो वहां से।
3: हादसे अचानक ही हुआ करते हैं, घबराए नहीं, समझदारी से काम ले। सबसे पहले कुत्ते के काटे जख्म को 20 मिनट तक साफ पानी और आम साबुन से धोएं। इसके बाद करीबी अस्पताल जाकर डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाएं। करीबी एंटी रेबीज सेंटर की मालूमात के लिए 1122 पर राबिता करें। महकमा सेहत, हुकूमत सिंध।
0: दिस पब्लिक सर्विस मैसेज इज ब्रॉट टू यू बाय FM 100। गाड़ी चलाते वक्त ये ना सोचिए कि सिर्फ आपकी गलतियां हादसात का सबब बन सकती हैं। दूसरों की गलतियों के लिए भी तैयार रहिए। ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी कीजिए। FM 100 लाइक अस ऑन facebook.com/fm247365 FM 247365. Let's celebrate 31 years of memories, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy. Assalamu alaikum, Pakistan. Let's celebrate the journey.

0: It's 7:15 a.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: जब बात आपकी सेहत की हो तो खालिस्तान बहुत अहमियत रखता है। शोबे मयार की सख्त जांच पड़ताल करता है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हर दवा असली और काबिले भरोसा हो। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शोबे जर्मनी पिछले 75 सालों से सेहतमंद पाकिस्तान के लिए कोशां।
0: गली मोहल्लों में सफाई का खास ख्याल रखें, कहीं पर पानी खड़ा ना होने दें। डेंगू जानलेवा मर्ज है, इलाज से बेहतर एहतियात है। This public service message is brought to you by FM 100.
2: कभी सोचा है कि अब जंग की सूरत क्या है? अब जंग मैदान-ए-जंग में नहीं, हमारे जहनों में लड़ी जा रही है। अब दुश्मन की गोलियां बारूद नहीं, मालूमात हैं, और निशाना हम सब। रियासत मुखालिफ ताकतें हमारे घरों के दरवाजे तक पहुंच चुकी हैं। टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के पर्दे में दुश्मन छुपा बैठा है। वो ढूंढता है कमजोर लम्हे, बेरोजगार नौजवान, जरूरतमंद खानदान, फिर उनके सामने बिछाता है ख्वाब, बड़ी नौकरी, तेज दौलत, बैरून मुल्क सफर, और फिर कभी रिपोर्टर की सूरत में, कभी एनजीओ वर्कर या फ्रीलांसर बनकर उनसे वो राज निकलवाता है जो दुश्मन का रास्ता खो देते हैं, जिनसे बदमनी, खौफ और फसाद हमारे गली कूचों तक उतर आते हैं, हमें अपनी ही मट्टी के खिलाफ खड़ा कर देता है। जो आपसे मालूमात लेता है वो आपकी जात तक पहुंचता है, आपकी तस्वीरें, पहचान, फोन, सब कुछ खतरे में डाल देता है। तो याद रखिए, किसी अजनबी को अपनी कोई हसास बात ना दीजिए। कोई मशकूक चीज, कॉल या पेशकश हो, फौरन रिपोर्ट कीजिए। हसास मकामात बस अपने इदारे तक रखिए, क्योंकि हर लफ्ज, हर क्लिक, हर तस्वीर या तो हिफाजत है या खतरा। फैसला आपके हाथ में है।
0: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
3: Like us on facebook.com/FM247365. FM247365.

0: अजरा बहन जरा बात तो सुनो।
1: हटो पीछे, भागो।
2: अहमद हटो वहाँ से।
3: हादसे अचानक ही हुआ करते हैं, घबराए नहीं, समझदारी से काम ले। सबसे पहले कुत्ते के काटे जख्म को 20 मिनट तक साफ पानी और आम साबुन से धोएं। इसके बाद करीबी अस्पताल जाकर डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाएं। करीबी एंटी रेबीज सेंटर की मालूमात के लिए 1122 पर राबिता करें। महकमा सेहत, हुकूमत सिंध।
4: अगली गाड़ी से रास्ता लेने के लिए दिन में हॉर्न और रात में बत्तियों का इस्तेमाल कीजिए और रास्ता मिलने का इंतजार कीजिए।
5: दिस मैसेज वॉज ब्रॉट टू यू बाई FM 100 पाकिस्तान।
6: FM 100 लाइक अस ऑन facebook.com/FM247365।

0: अजरा बहन जरा बात तो सुनो।
1: हटो पीछे, भागो।
2: अहमद हटो वहाँ से।
3: हादसे अचानक ही हुआ करते हैं, घबराए नहीं, समझदारी से काम लें। सबसे पहले कुत्ते के काटे जख्म को 20 मिनट तक साफ पानी और आम साबुन से धोएं। इसके बाद करीबी अस्पताल जाकर डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाएं। करीबी एंटी रेबीज सेंटर की मालूमात के लिए 1122 पर राबिता करें। महकमा सेहत, हुकूमत सिंध।
4: दिस पब्लिक सर्विस मैसेज इज ब्रॉट टू यू बाय FM 100। बाइक चलाते वक्त हेलमेट का इस्तेमाल कीजिए, ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी कीजिए। लाइक अस ऑन
5: सोशल मीडिया सार्फीन खसूसन नौजवान नस्ल के लिए इंटरनेट के मनफी पहलुओं की आगाही इंतहाई जरूरी है। तोहीन रसालत, इस्लाम और रियासत मुखालिफ, फौश मवाद और झूठी खबरें इंटरनेट पर डालना या शेयर करना काबिल सजा जुर्म है। लिहाजा हर किस्म के गैर कानूनी मवाद को इंटरनेट और सोशल मीडिया पर शेयर करने से गुरेज करें। ऐसे गैर कानूनी मवाद को हटाने के लिए PTA और ऐसे अफराद के खिलाफ कार्रवाई के लिए NCCIA से रुजू करें। ये मुफाद आमा का पैगाम अब तक पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की जानिब से पेश किया गया है।
6: बैंकिंग सहूलियात जैसा कि माइक्रो फाइनेंस एप्स, जैज कैश, इजी पैसा और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स अमूमन सारिफ के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के साथ मुंसलिक होते हैं, जिसके जरिए ये अकाउंट्स न सिर्फ फाल किए जाते हैं बल्कि किसी तब्दीली की सूरत में तस्दीक के लिए भी इस्तेमाल किए जाते हैं। अगर कोई सिम आपके नाम से हटा दी जाए या तवील अरसे तक इस्तेमाल न होने की वजह से रिसाइकल होकर दोबारा जारी कर दी जाए तो यही नंबर किसी दूसरे शख्स को दिया जा सकता है, और अगर बर वक्त एहतियाती तदाबीर इख्तियार न की जाए तो नया सारिफ इस नंबर से मुंसलिक आपके सोशल मीडिया या दिगर डिजिटल अकाउंट्स तक रसाई कर सकता है। ऐसे अकाउंट से की जाने वाली किसी भी गैर कानूनी, गुमराहकुनी या तौहीन आमेज सरगर्मी की जिम्मेदारी असल अकाउंट होल्डर पर आयद हो सकती है, जिसके नतीजे में कानूनी पेचीदगियां और शोहरत को नुकसान पहुंचने का खदशा होता है। इसी तरह अगर पुराने नंबर से मुंसलिक बैंकिंग या मालियाती एप्स महफूज न की जाए तो माली धोखाधड़ी और गलत इस्तेमाल का खतरा भी पैदा हो सकता है। अपने ऑनलाइन तहफ्फुज़ के पेश नज़र ये इकदाम जरूर उठाएं। जैसे ही कोई नंबर अपने नाम से हटाएं या तब्दील करें, फौरन अपने तमाम सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स अपडेट कर लें। अपने बैंक, माइक्रो फाइनेंस और पेमेंट एप्स में हमेशा अपना मौजूदा और फाल नंबर रखें। अकाउंट्स में मजबूत सिक्योरिटी फीचर्स फाल करें, जैसा कि 2-फैक्टर ऑथेंटिकेशन और अकाउंट रिकवरी की सेटिंग्स। डिजिटल तहफ्फुज का आगाज सिम के जिम्मेदाराना इस्तेमाल से ही मुमकिन है। बर वक्त और पेशगी इकदाम आपकी शनाख्त, माली तहफ्फुज और कानूनी हैसियत में मददगार साबित होते हैं। डिजिटल दुनिया में महफूज कदम, PTA।

0: FM 100's time check. It's 8 a.m.
1: जरा बहन, जरा बात तो सुनो। हटो पीछे, भागो। अहमद, हटो वहां से।
2: हादसे अचानक ही हुआ करते हैं, घबराए नहीं, समझदारी से काम ले। सबसे पहले कुत्ते के काटे जख्म को 20 मिनट तक साफ पानी और आम साबुन से धोएं। इसके बाद करीबी अस्पताल जाकर डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाएं। करीबी एंटी रेबीज सेंटर की मालूमात के लिए 1122 पर राबिता करें। महकमा सेहत, हुकूमत सिंध।
3: महराना देखभाल में फितरत परवान चढ़ती है। शॉबिंग सिंगल रेमेडीज मखसूस हर्बल फार्म्स और नबताती बागा से हासिल की जाती हैं, ताकि आपको ऐसा मयार मिले जिस पर आप मुकम्मल भरोसा कर सकें। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शॉबे जर्मनी के पाकिस्तान में 75 साल सिर्फ सेहतमंद पाकिस्तान के नाम।
4: आज सुबह किसी का व्हाट्सएप और किसी का बैंक अकाउंट हैक हो गया और कहीं एक बिजनेस साइबर अटैक का शिकार बन गया। साइबर अटैक सिर्फ सिस्टम्स को नहीं, जिंदगियों को भी टारगेट करते हैं। इसीलिए इग्नाइट अंडर मिनिस्ट्री ऑफ आईटी एंड टेलीकॉम ब्रिंग्स यू द फिफ्थ डिजिटल पाकिस्तान साइबर सिक्योरिटी हैकाथॉन। हैंड्स ऑन वर्कशॉप्स, रेड एंड ब्लू टीमिंग कॉम्पिटिशन्स। अगर आप स्टूडेंट हैं, साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल या एथिकल हैकर, पाकिस्तान के अगले साइबर डिफेंडर बनिए। रजिस्टर नाउ एट cyberhackathon.pk।
5: सर सब नाइट्रोफॉस की बोरी पे लगा 9 हिंसों का स्टिकर कोड अपने नाम और इलाके के साथ 0300-0300-641 पर भेजें या सर सब पाकिस्तान ऐप के जरिए अपनी एंट्री रजिस्टर करवाएं और मौका पाएं उम्र टिकट, मोटरसाइकिल और मोबाइल फोन जैसे ढेरों इनाम जीतने का। एंट्री भेजने के बाद बोरी और स्टिकर संभाल के रखें। मजीद मालूमात के लिए सर सब हेल्पलाइन पर कॉल करें। तो सर सब नाइट्रोफॉस को लगा और जीत ताजा।
6: Pakistan is building a safer, smarter digital ecosystem, and we need your talent. Step up, build a cyber-safe life, and unlock premier careers in cybersecurity at the 5th Digital Pakistan Cybersecurity Hackathon. Organized by Ignite under the Ministry of IT and Telecom, join hands-on training workshops in 16 cities and secure your future. Registrations are open now at cyberhackathon.pk.
0: This program is brought to you by
7: Phoenix laga aur bhul ja, Phoenix laga aur bhul ja,
5: and Sir Sabs Nitro Force ko laga aur jeet ta ja, and
8: Shaukat Khanam Karachi ki takleef.
9: Bain al-aqwami safar par rawana hone wale mutawajjih hon, aisi online apps aur platforms se ijtinab kare jo paison ki ivaz kisi namaloom shakhs ka samaan aapke apne samaan ke sath le jane ke liye karte. यह आसान कमाई का तरीका तो नजर आता है, लेकिन हकीकत में खतरनाक जाल है। मंशियात फरोश इन्हीं तरीकों को इस्तेमाल करके मंशियात स्मगल कर रहे हैं। याद रखें, अगर आपके सामान से मंशियात बरामद हुई तो कानूनन इस जुर्म के जिम्मेदार सिर्फ आप होंगे। खबरदार, किसी अजनबी का सामान दौरान सफर अपने साथ ले जाना आपके लिए खतरनाक हो सकता है।
10: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔
11: قدرت کا نظام توازن پر قائم ہے،
12: وسائل سے زیادہ آبادی کے بوجھ سے توازن بگڑ جاتا ہے۔
13: گھر کے افراد اور آمدن میں توازن
14: ہماری ذمہ داری ہے۔
15: خاندانی منصوبہ بندی کے طریقوں پر عمل کر کے اپنی ذمہ داری پوری کریں۔
10: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔
0: Us on facebook.com/fm247365 fm247365 fm100
16: 31 saal fm100 aapki awaaz.
17: Assalamu alaikum pakistan
18: assalamu alaikum pakistan
17: pakistan

0: 9:15 a.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: आम चीजों पर समझौता क्यों करें? श्वाबे सिंगल रेमेडीज मुस्तनद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन नज़ा लाए हैं ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके। डॉक्टर हमीद जनरल होमियो और श्वाबे सिंगल रेमेडीज, भरोसे देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल।

0: अजरा बहन जरा बात तो सुनो। हटो पीछे, भागो।
1: अहमद हटो वहाँ से।
2: हादसे अचानक ही हुआ करते हैं, घबराए नहीं, समझदारी से काम ले। सबसे पहले कुत्ते के काटे जख्म को 20 मिनट तक साफ पानी और आम साबुन से धोएं। इसके बाद करीबी अस्पताल जाकर डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाएं। करीबी एंटी रेबीज सेंटर की मालूमात के लिए 1122 पर राबिता करें। महकमा सेहत, हुकूमत सिंध।
3: खालिस अज्जा, भरोसेमंद शिफा, श्वाबे सिंगल रेमेडीज कुदरत के बेहतरीन अज्जा से तैयार की गई हैं, क्योंकि आपकी सेहत इससे कम की हकदार नहीं। डॉक्टर हमीद जनरल होमियो और श्वाबे सिंगल रेमेडीज 75 सालों से पाकिस्तान में नस्लों का भरोसा।
4: सर सर, नाइट्रोफॉस की बोरी पे लगा 9 हिस्सों का स्टिकर कोड अपने नाम और इलाके के साथ 0300-0300-641 पर भेजें, या सर सर पाकिस्तान ऐप के जरिए अपनी एंट्री रजिस्टर करवाएं और मौका पाएं उम्र टिकट, मोटरसाइकिल और मोबाइल फोन जैसे ढेरों इनामात जीतने का। एंट्री भेजने के बाद बोरी और स्टिकर संभाल के रखें। मजीद मालूमात के लिए सर सब हेल्पलाइन पर कॉल करें। तो सर सब नाइट्रोफॉस को लगा और जीत ताजा।
5: Pakistan is building a safer, smarter digital ecosystem, and we need your talent. Step up, build a cyber-safe life, and unlock premier careers in cybersecurity at the 5th Digital Pakistan Cybersecurity Hackathon. Organized by Ignite under the Ministry of IT and Telecom, join hands-on training workshops in 16 cities and secure your future. Registrations are open now at cyberhackathon.pk.
6: This program is brought to you by
7: Phoenix laga aur bhul ja, Phoenix laga aur bhul ja,
4: and Sir Sabs Nitro Force ko laga aur jeet ta ja, and
8: Shaukat Khanum Karachi ki takmeer.
9: Like us on facebook.com/fm247365.

0: It's 8:45 a.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries. Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul
1: ja. Azra behan, zara baat to suno. Hatu piche, bhago. Ahmed, hatu wahan se.
2: हादसे अचानक ही हुआ करते हैं, घबराए नहीं, समझदारी से काम ले। सबसे पहले कुत्ते के काटे जख्म को 20 मिनट तक साफ पानी और आम साबुन से धोएं। इसके बाद करीबी अस्पताल जाकर डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाएं। करीबी एंटी रेबीज सेंटर की मालूमात के लिए 1122 पर राबिता करें। महकमा सेहत, हुकूमत सिंध।

0: This program is brought to you by
1: Phoenix laga aur bhul ja, Phoenix laga aur bhul ja.
0: And
2: Sarsabz Nitro Force ko laga aur jeet ta ja.
0: And
3: Shaukat Khanam Karachi ki takleef.
4: तेजी से फैलती डिजिटल दुनिया एक जबरदस्त सलाहियत के साथ साथ एक अहम जिम्मेदारी भी। मजहबी, फिरका वाराना या नस्ली बुनियाद पर नफरत अंगेजी, दहशत गर्दी की तरगीब से मुतल्लिक किसी भी तरह का मवाद फैलाना, इलेक्ट्रॉनिक जालसाजी, स्पैमिंग, धोखादही, बशमूल आइडेंटिटी थेफ्ट, चाइल्ड पोर्नोग्राफी और साइबर स्टॉकिंग और अनचाही मुदाखलत, मसलन किसी भी फर्द से जबरदस्ती या बार बार राबिता करना, मुतल्लिका शख्स की रजामंदी के बगैर उसकी तस्वीर या वीडियोस बनाना और शेयर करना वगैरह संगीन जराइम है। इस तरह की खिलाफ वर्जियाँ पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट और दीगर कानून के तहत कानूनी नतायज की मुतहम्मिल हैं। अगर आप इस बारे में कोई सवाल करना, इस सिलसिले में मदद तलब करना, किसी वाकये की इत्तला देना या इन कवानीन की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब अफराद के बारे में हुकूमत की मुआवनत करना चाहते हैं, तो बराह करम हमारी हेल्पलाइन पर कॉल करें।
5: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया। बच्चों का ऑनलाइन तहफ्फुज आपकी जिम्मेदारी है। अपने बच्चों को ऑनलाइन राब्तों का महफूज तरीका इस्तेमाल सिखाएं। इंटरनेट के जरिए खेलों, तफरी और तालीमी सरगर्मियों में शामिल होने के फवायद जरूर हैं, लेकिन इसमें नामुनासिब मवाद, साइबर बुलिंग और दीगर ऑनलाइन नुकसान जैसे मुमकिन खतरात भी मौजूद हैं। वालिदैन और असातिज़ा की जानिब से बच्चों की निगरानी और रहनुमाई न होने की सूरत में बच्चे बासानी मनफी सरगर्मियों का शिकार हो सकते हैं। वालिदैन को अपने बच्चों की ऑनलाइन सरगर्मियों के हवाले से आगाह और होशियार रहने की जरूरत है। बच्चों को नुकसानदेह मवाद जैसे नफरत अंगेज तकरीर, गुस्ताखाना और फहाश मवाद वगैरह अपलोड और शेयर करने के कानूनी नतायज के हवाले से भी शऊर और आगाही इंतहाई अहमियत की हामिल है। पीटीए की वेबसाइट पर पेरेंटल कंट्रोल सॉफ्टवेयर की एक फहरिस्त दस्तियाब है, ताकि वालदैन अपने बच्चों की ऑनलाइन सरगर्मियों की निगरानी करते हुए उन्हें ऑनलाइन नुकसान से महफूज रखें। www.pta.gov.pk। मुफाद आमा के लिए ये पैगाम FM 100 और हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
6: पाकिस्तान हमसे है, हम अच्छे तो पाकिस्तान अच्छा। तो आओ अहद करें कि जैसा पाकिस्तान हम देखना चाहते हैं वैसे खुद बनकर दिखाएंगे, क्योंकि हम बदलेंगे तो बदलेगा पाकिस्तान। अजमे इस्तेहकाम मुस्तहकम पाकिस्तान।
5: मुफादे आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
7: ख्वाब तो सब देखते हैं बेहतर रोजगार का, मगर इस ख्वाब की ताबीर के गैर कानूनी जराए खतरनाक रस्तों पे ले जा सकते हैं, जहां मौत मुंह खोले आपकी मुंतजर है।
8: हमने अपने आप को से तीन बार मौत देखा।
9: टाइम से मनु ऐसे ही कि मैं हूँ कब्र से चला गया, मैं नहीं बचा।
10: फिर उन्होंने साड़ी वीडियो बनाया, सानू मारिया, सानू कुटिया।
7: अपने ख्वाबों की तकमील के लिए कानूनी रास्ता इख्तियार करें।
11: एम्बेसी के थ्रू प्रॉपर वे में सबमिट करवाया और बहुत ही जल्दी मेरा वीजा लग गया था वर्क वीजा।
7: इंसानी स्मगलिंग में मुलविस गिरोहों के सद्देभाव के लिए वजीर आजम पाकिस्तान की सरबराही में खसूसी टास्क फोर्स का क्याम। मुलगीर क्रैकडाउन जारी। एजेंट्स और सरकारी अहलकारान के खिलाफ मुकदमात का इंदराज, गिरफ्तारियां, जायदादों की जब्तगी और बैंक अकाउंट्स मुंजमद किए जा रहे हैं। अंदरूनों बैरूने मुल्क बेहतर रोजगार के लिए प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम और नेफटेक के जदीद तरीन और मुफ्त कोर्सेज में अभी दाखिला लें। मकामात मुकद्दसा की ज़ियारत को जाने वाले ज़ायरीन भी कानूनी ज़राए इख्तियार करें। इंसानी स्मगलरों के चंगुल से बचें, ख्वाब जरूर देखें, बेहतर रास्ता चुनें। हुकूमत पाकिस्तान।
5: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
0: FM 100 लाइक अस ऑन facebook.com/FM247365
12: FM247365।
13: किसी भी इंसान के लिए सबसे अहम होती है उसकी सेहत।
14: किसी भी शख्स को देख के उसकी सेहत के बारे में अंदाजे ना लगाएं।
13: मुझे पता है कि मेरा वजन ज्यादा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं वॉक नहीं करता।
15: जी हाँ, मुझे भी लोग मोटी कहते हैं, मगर ऐसा नहीं कि मैं बहुत खाती हूँ।
14: हम बिना किसी तहकीक के बस बातें बनाने का फन जानते हैं। सामने वाले पर क्या गुजरी हमें से क्या।
13: मैं ओबेसिटी का शिकार हूँ, सिर्फ वॉक से ये कम हुई।
15: मोटापा एक बीमारी है, सिर्फ मीठा ना खाने से खत्म नहीं होगी।
14: सिर्फ बातें बनाने से हम इसका मुकाबला नहीं कर सकते।
15: अभी इसी वक्त अपना BMI चेक करवाइए,
13: यानी अपने वेट को अपनी हाइट की मुनासिबत से जांचिए
14: और इस वजन की असल हकीकत को समझें।
13: आइए वेट से आगे का सोचें।
5: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।

0: your location for maximum music. FM 100's time check. It's 9 a.m.
1: जरा बहन, जरा बात तो सुनो। हटो पीछे, भागो। अहमद, हटो वहाँ से।
2: हादसे अचानक ही हुआ करते हैं, घबराए नहीं, समझदारी से काम ले। सबसे पहले कुत्ते के काटे जख्म को 20 मिनट तक साफ पानी और आम साबुन से धोएं। इसके बाद करीबी अस्पताल जाकर डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाएं। करीबी एंटी रेबीज सेंटर की मालूमात के लिए 1122 पर राबिता करें। महकमा सेहत, हुकूमत सिंध।
3: जब बात आपकी सेहत की हो तो खालिस्तान बहुत अहमियत रखता है। शोबे मयार की सख्त जांच पड़ताल करता है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हर दवा असली और काबिल भरोसा हो। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शोबे जर्मनी, पिछले 75 सालों से सेहतमंद पाकिस्तान के लिए कोशां।
0: This program is brought to you by
4: Phoenix लगा और भूल जा, Phoenix लगा और भूल जा।
5: And सरसब्स नाइट्रो फोर्स को लगा और जीतता जा। And
6: शौकत खानम कराची की तकलीफ।
0: Like us on facebook.com/fm247365
7: fm247365.
8: Let's celebrate
9: 31 years of memories, milestone and moments. FM 100 Pakistan, it's a legacy.
10: Assalamu alaikum Pakistan. Let's celebrate the journey.

0: It's 9:15 a.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: माहिराना देखभाल में फितरत परवान चढ़ती है. शॉबे सिंगल रेमेडीज मखसूस हर्बल फार्म्स और नबताती बागा से हासिल की जाती हैं, ताकि आपको ऐसा मयार मिले जिस पर आप मुकम्मल भरोसा कर सकें. डॉक्टर हमीद जनरल होमियो और शॉबे जर्मनी के पाकिस्तान में 75 साल सिर्फ सेहतमंद पाकिस्तान के नाम.
2: किसने कहा था पैसे

0: अजरा बहन जरा बात तो सुनो।
1: हटो पीछे, भागो। अहमद हटो वहाँ से।
2: हादसे अचानक ही हुआ करते हैं, घबराए नहीं, समझदारी से काम ले। सबसे पहले कुत्ते के काटे जख्म को 20 मिनट तक साफ पानी और आम साबुन से धोएं। इसके बाद करीबी अस्पताल जाकर डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाएं। करीबी एंटी रेबीज सेंटर की मालूमात के लिए 1122 पर राबिता करें। महकमा सेहत, हुकूमत सिंध।
3: आम चीजों पर समझौता क्यों करें? शोबे सिंगल रेमेडीज मुस्तनद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन अज्जा लाए हैं ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके। डॉक्टर हमीद जनरल होमियो और शोबे सिंगल रेमेडीज, भरोसे, देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल।
4: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय फिनिक्स लगा और भूल जा, फिनिक्स लगा और भूल जा। एंड सरसब्स नाइट्रोफॉस को लगा और जीतता जा। एंड
5: शौकत खानम कराची की तकलीफ।
4: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365. FM 247365.

0: It's 9:45 a.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries.
1: Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja.
2: Azra behan, zara baat to suno. Hatu piche, bhago. Ahmed, hatu wahan se.
3: हादसे अचानक ही हुआ करते हैं, घबराए नहीं, समझदारी से काम लें। सबसे पहले कुत्ते के काटे जख्म को 20 मिनट तक साफ पानी और आम साबुन से धोएं। इसके बाद करीबी अस्पताल जाकर डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाएं। करीबी एंटी रेबीज सेंटर की मालूमात के लिए 1122 पर राबिता करें। महकमा सेहत, हुकूमत सिंध।

0: It's 10:15 a.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: जब बात आपकी सेहत की हो तो खालिस्तान बहुत अहमियत रखता है। शोबे मयार की सख्त जांच पड़ताल करता है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हर दवा असली और काबिल भरोसा हो। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शोबे जर्मनी पिछले 75 सालों से सेहतमंद पाकिस्तान के लिए गोशा।
2: किसने कहा था पैसे बचा।

0: Like us on facebook.com/FM247365. FM247365.
1: कभी सोचा है कि अब जंग की सूरत क्या है? अब जंग मैदान जंग में नहीं, हमारे जहनों में लड़ी जा रही है। अब दुश्मन की गोलियां बारूद नहीं, मालूमात हैं, और निशाना हम सब। रियासत मुखालिफ ताकतें हमारे घरों के दरवाजे तक पहुंच चुकी हैं। टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के पर्दे में दुश्मन छुपा बैठा है। वो ढूंढता है कमजोर लम्हे, बेरोजगार नौजवान, जरूरतमंद खानदान, फिर उनके सामने बिछाता है ख्वाब, बड़ी नौकरी, तेज दौलत, बैरून मुल्क सफर, और फिर कभी रिपोर्टर की सूरत में, कभी एनजीओ वर्कर या फ्रीलांसर बनकर उनसे वो राज निकलवाता है जो दुश्मन का रास्ता खो देते हैं, जिनसे बदमनी, खौफ और फसाद हमारी गली कूचों तक उतर आते हैं, हमें अपनी ही मट्टी के खिलाफ खड़ा कर देता है। जो आपसे मालूमात लेता है वो आपकी जात तक पहुंचता है, आपकी तस्वीरें, पहचान, फोन, सब कुछ खतरे में डाल देता है। तो याद रखिए, किसी अजनबी को अपनी कोई हसास बात ना दीजिए। कोई मशकूक चीज, कॉल या पेशकश हो, फौरन रिपोर्ट कीजिए। हसास मकामात बस अपने इदारे तक रखिए, क्योंकि हर लफ्ज, हर क्लिक, हर तस्वीर या तो हिफाजत है या खतरा। फैसला आपके हाथ में है।
2: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।

0: अजरा बहन जरा बात तो सुनो,
1: हटो पीछे, भागो। अहमद हटो वहां से।
2: हादसे अचानक ही हुआ करते हैं, घबराए नहीं, समझदारी से काम ले। सबसे पहले कुत्ते के काटे जख्म को 20 मिनट तक साफ पानी और आम साबुन से धोएं। इसके बाद करीबी अस्पताल जाकर डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाएं। करीबी एंटी रेबीज सेंटर की मालूमात के लिए 1122 पर राबिता करें। महकमा सेहत, हुकूमत सिंध।
3: माहिराना देखभाल में फितरत परवान चढ़ती है। शॉबिन सिंगल रेमेडीज मखसूस हर्बल फार्म्स और नबताती बागा से हासिल की जाती हैं, ताकि आपको ऐसा मयार मिले जिस पर आप मुकम्मल भरोसा कर सकें। डॉक्टर हमीद जर्नल होम्यो और शॉबे जर्मनी के पाकिस्तान में 75 साल सिर्फ सेहतमंद पाकिस्तान के नाम।
4: ब्रांड न्यू सुजुकी ऑल्टो जीतना चाहते हैं? बस अपने इजी पैसा अकाउंट में 15,000 रुपए या उससे ज्यादा डिपॉजिट करें, बैलेंस 20 दिन तक मेंटेन करें और लकी ड्रॉ में 4 सुजुकी ऑल्टो या 50,000 के 100 कैश प्राइजेस जीतने का मौका पाएं। तो इंतजार किस बात का, अभी डिपॉजिट करें और जीते। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
5: facebook.com/fm247365 fm247365

0: 5 a.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries. Phoenix laga aur bhul ja, Phoenix laga aur bhul ja. तेजी से फैलती डिजिटल दुनिया एक जबरदस्त सलाहियत के साथ साथ एक अहम जिम्मेदारी भी। मजहबी, फिरका वाराना या नस्ली बुनियाद पर नफरत अंगेजी, दहशतगर्दी की तरगीब से मुतल्लिक किसी भी तरह का मवाद फैलाना, इलेक्ट्रॉनिक जालसाजी, स्पैमिंग, धोखा दही, बशमूल आइडेंटिटी थेफ्ट, चाइल्ड पोर्नोग्राफी और साइबर स्टॉकिंग और अनचाही मुदाखलत, मसलन किसी भी फर्द से जबरदस्ती या बार बार राबिता करना, मुतल्लिका शख्स की रजामंदी के बगैर उसकी तस्वीर या वीडियोस बनाना और शेयर करना वगैरह संगीन जराइम है। इस तरह की खिलाफ वर्जियाँ पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट और दीगर कानून के तहत कानूनी नतायज की मुतहम्मिल हैं। अगर आप इस बारे में कोई सवाल करना, इस सिलसिले में मदद तलब करना, किसी वाकये की इत्तला देना या इन कानून की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब अफराद के बारे में हुकूमत की मुआवनत करना चाहते हैं, तो बराह करम हमारी हेल्पलाइन पर कॉल करें।
1: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
2: डेंगू एक खतरनाक बीमारी है जो मच्छर के काटने से फैलती है। सुबह सूरज निकलने के बाद और शाम सूरज गुरूब होने से पहले ये मच्छर आपको काट सकता है। अगर आपको अचानक तेज बुखार, शदीद सरदर्द, जिस्म और जोड़ों में दर्द, मतली या कमजोरी महसूस हो तो फौरन डॉक्टर से रुजू करें। डेंगू का मच्छर साफ पानी में पैदा होता है, इसलिए घर और इर्द गिर्द कहीं भी पानी जमा ना होने दें। पानी की टैंकियों को ढांप कर रखें, गमलों और कूलर का पानी बाकायदगी से तब्दील करें, लंबी आस्तीन वाले कपड़े पहने, मच्छर मार स्प्रे और मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। याद रखें, एहतियात ही डेंगू से बचाव का बेहतरीन तरीका है। डेंगू से बचाओ, आपकी एहतियात, आपकी हिफाजत।
1: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
3: क्या आप जानते हैं कि टेलीकॉम ऑपरेटर्स की जानिब से मुख्तलिफ वैल्यू एडेड सर्विसेज फराहम की जाती हैं? इन सर्विसेज में रिंगटोन्स, ब्रेकिंग न्यूज अलर्ट्स, मिस्ड कॉल अलर्ट, इंटरनेट बंडल्स, गेम्स और दीगर मालूमाती सहूलियात शामिल हो सकती हैं। ताहम बाज़ औक़ात ये मुशाहिदा सामने आया है कि सारिफ की इजाजत के बगैर कोई वैल्यू एडेड सर्विस फाल हो जाती है या बैलेंस से रकम कट जाती है, जबकि सारिफ को इसका इल्म भी नहीं होता। याद रखें कि वैल्यू एडेड सर्विस की फालियत के लिए सारिफ की तस्दीक जरूरी होती है, जिसके लिए अमूमन ओटीपी की तस्दीक या मखसूस यूएसएसडी को डायल करना लाजिम होता है। याद रखें, पीटीए टेलीकॉम ऑपरेटर्स को वैल्यू एडेड सर्विस खुदकार तौर पर एक्टिवेट करने की इजाजत नहीं देता। अगर आपने ना तो ओटीपी शेयर किया है और ना ही कोई कोड डायल किया है तो ऐसी सर्विस फाल नहीं होनी चाहिए। अगर आपके साथ भी ऐसी सूरत हाल पेश आए तो परेशान होने की जरूरत नहीं। सबसे पहले अपने मुतल्लिका टेलीकॉम ऑपरेटर से राब्ता करें और बाकायदा शिकायत दर्ज करवाएं। ऑपरेटर आपको एक शिकायत नंबर फराहम करेगा। अगर मुकर्रर वक्त के अंदर आपका मसला हल ना हो तो आप पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी के ऑनलाइन पोर्टल पर भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। शिकायत के अंदराज का तरीकाकार ये है कि सबसे पहले वेबसाइट complaint.pta.gov.pk पर जाएं। शिकायत के अंदराज के लिए सारिफ को अपने नाम और शनाख्ती कार्ड पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के जरिए एक यूजर प्रोफाइल बनाना होगा। इसके बाद साइन अप के ऑप्शन पर क्लिक करें और मतलूबा मालूमात फराहम करें, जिनमें नाम, शनाख्ती कार्ड नंबर, राबता नंबर, शहर का नाम और पासवर्ड शामिल होंगे। इसके बाद जनरेट ओटीपी पर क्लिक करें और मौसूल होने वाला वन टाइम पासवर्ड दर्ज करें। अकाउंट बनने के बाद साइन इन करें और अपना CNIC और पासवर्ड दर्ज करके लॉग इन हो जाएं। याद रखें कि आपका कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर ही आपका यूजर नेम होगा। लॉग इन होने के बाद बाएं जानिब मौजूद रजिस्टर न्यू कंप्लेंट के ऑप्शन पर क्लिक करें। अब शिकायत की तफसीलात दर्ज करें और शिकायत की नौयत मुंतखब करें। इसके बाद शहर, सर्विस, फराहम कुनंदा की किस्म और दीगर मतलूबा मालूमात फराहम करें। अगर आपकी शिकायत किसी मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर से मुतालिक है तो इस बात को यकीनी बनाएं कि आपके पास वो शिकायत नंबर मौजूद हो जो आपको ऑपरेटर के पास शिकायत दर्ज कराते वक्त फराहम किया गया था, क्योंकि पीटीए के पास शिकायत के अंदराज के लिए ये नंबर देना जरूरी होता है। अब कंप्लेंट नंबर दर्ज करें और कंप्लेंट समरी में अपनी शिकायत की तफसील लिखें। जरूरत के तहत मुतल्लिका फाइल भी मुंसलिक की जा सकती है। इसके बाद कवायद और जवाबित कबूल करते हुए अपनी शिकायत बाकायदा तौर पर सबमिट कर दें। शिकायत सबमिट होने के बाद आपको ایک ریفرنس نمبر موصول ہوگا جس کے ذریعے آپ اپنی شکایت کا سٹیٹس بھی معلوم کر سکتے ہیں۔ مزید معلومات کے لیے پی ٹی اے کے ٹول فری نمبر 0800-555-055 پر رابطہ کریں۔ ڈیجیٹل دنیا میں محفوظ قدم، پی ٹی اے۔
4: یہ مفاد عامہ کا پیغام اب تک پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے پیش کیا گیا ہے۔
5: facebook.com/fm247365 fm247365

0: your location for maximum music. FM 100's time check. It's 11 a.m.
1: जरा बहन, जरा बात तो सुनो। हटो पीछे, भागो।
2: अहमद, हटो वहाँ से।
3: हादसे अचानक ही हुआ करते हैं। घबराए नहीं, समझदारी से काम ले। सबसे पहले कुत्ते के काटे जख्म को 20 मिनट तक साफ पानी और आम साबुन से धोएं। इसके बाद करीबी अस्पताल जाकर डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाएं। करीबी एंटी रेबीज सेंटर की मालूमात के लिए 1122 पर राबिता करें। महकमा सेहत, हुकूमत सिंध।
4: कहीं अनजाने में आप दहशतगर्दों की माली मुआवनत तो नहीं कर रहे? होशियार रहें, मोहतात रहें। अपना बैंक अकाउंट किसी दूसरे फर्द को हरगिज़ इस्तेमाल न करने दें और न ही किसी अनजान अकाउंट में रकम मुंतकिल करें। हुंडी, हवाला या बैंक अकाउंट के जरिए दहशतगर्दों की माली मुआवनत करने वाले अफराद के खिलाफ इंसदादे दहशतगर्दी एक्ट के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई का आगाज हो चुका है। याद रखें, दहशतगर्दों की माली मुआवनत भी दहशतगर्दी है। हुकूमत पाकिस्तान।
5: मुफाद आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया।
0: लाइक अस ऑन facebook.com/FM247365
6: 31 years of memories, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
7: Assalamu alaikum, Pakistan. Let's celebrate the journey.

0: 11:15 a.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: आम चीजों पर समझौता क्यों करें? शॉबे सिंगल रेमेडीज मुस्तना जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन अज्जा लाए हैं ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके. डॉक्टर हमीद जर्नल होम्यो और शॉबे सिंगल रेमेडीज, भरोसे, देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल.
2: कहीं अनजाने में आप दहशत गर्दों की माली मुआवनत तो नहीं कर रहे? होशियार रहें, मोहतात रहें. अपना बैंक अकाउंट किसी दूसरे फर्द को हरगिज इस्तेमाल न करने दें और न ही किसी अनजान अकाउंट में रकम मुंतकिल करें. हुंडी, हवाला या बैंक अकाउंट के जरिए दहशतगर्दों की माली मुआवनत करने वाले अफराद के खिलाफ इंसदादे दहशतगर्दी एक्ट के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई का आगाज हो चुका है. याद रखें, दहशतगर्दों की माली मुआवनत भी दहशतगर्दी है. हुकूमत पाकिस्तान.
0: मुफाद आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया.
3: FM 100 लाइक अस ऑन facebook.com/FM247365. FM 247365.

0: location for maximum music.
1: जरा बहन, जरा बात तो सुनो। हटो पीछे, भागो। अहमद, हटो वहां से।
2: हादसे अचानक ही हुआ करते हैं, घबराए नहीं, समझदारी से काम ले। सबसे पहले कुत्ते के काटे जख्म को 20 मिनट तक साफ पानी और आम साबुन से धोएं। इसके बाद करीबी अस्पताल जाकर डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाएं। करीबी एंटी रेबीज सेंटर की मालूमात के लिए 1122 पर राबिता करें। महकमा सेहत, हुकूमत सिंध।

मुझको पास आते बैग फिर चेक कर लो पूरी है तो रेस एटीट्यूड अंगे रेस पर रेस वो ही जीते जो है स्टेडी एंड स्लो बैम बैम दिल धड़के डर करके तुझे देख के करता है हाँ सुन के तेरी सारी कहानी हर शैतानी करता है हाँ।

0: 24-7-365. FM 24-7-365. FM 100. 31 साल FM 100 आपकी आवाज. अस्सलामु अलैकुम पाकिस्तान.
1: अस्सलामु अलैकुम पाकिस्तान. पाकिस्तान.

0: It's 12:45 PM. This time check is brought to you by Phoenix Batteries.
1: Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja.
2: पाकिस्तान समेत दुनिया भर में बहुत सी औरतों को माली, जिस्मानी, जहनी और जिंसी घरेलू तशद्दुद का सामना करना पड़ रहा है। चाहे आप किसी के शौहर, वालिद, भाई या बेटे हों, अपना स्ट्रेस और फिक्र को अपनी बीवी, बेटी, बहन या वालिदा पर हरगिज़ ना निकालें। हुकूमत पाकिस्तान ने घरेलू तशद्दुद का निशाना बनने वाली औरतों के लिए खुसूसी हेल्पलाइन 1099 के साथ हेल्पलाइन 1099 ऐप का आगाज किया है, ताकि हमारे इदारे उनकी भरपूर मदद कर सकें। अगर आप या आपके जानने वाले घरेलू तशद्दुद का शिकार हैं, तो फौरी तौर पर हेल्पलाइन 1099 ऐप को गूगल प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर से डाउनलोड करें। होम स्क्रीन पर अपना नाम, फोन नंबर और शनाख्ती कार्ड नंबर दर्ज करके साइन अप करें। हंगामी हालात की सूरत में जहां आपकी या किसी की जान खतरे में हो, लाल बटन का इस्तेमाल करें, जिससे मुतल्लिका इदारे आपकी मदद के लिए फौरी हरकत में आ जाएंगे। तफसीली शिकायत के लिए सब्स बटन का इस्तेमाल करें, जिसमें आप तहरीरी शिकायत के साथ वीडियो, तस्वीर और ऑडियो सबूत भी जमा कर सकते हैं। याद रखिए, घरेलू तशद्दुद कानूनन जुर्म है और हम सबको मिलकर इसे रोकना है। तशद्दुद से तहफ्फुज आपका हक है। वजारत इंसानी हुकूक, हुकूमत पाकिस्तान।
0: मुफादे आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया।
3: 100 FM।
4: हाय फ्रेंड्स, आई एम मिकाल ज़ुल्फ़िकार एंड टुडे आई एम नॉट स्पीकिंग टू यू एज अ पब्लिक फिगर बट एज समवन हू केयर्स अबाउट योर फ्यूचर। We all dream of success and happiness, but drugs are silently destroying our dreams, lives, and our families. The Anti-Narcotics Force, the ANF, is bravely fighting this battle, but they can't fight it alone. They need your help and ours. Let's fight this together. Say no to drugs, and let's stand together.
0: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
5: डेंगू एक खतरनाक बीमारी है जो मच्छर के काटने से फैलती है। सुबह सूरज निकलने के बाद और शाम सूरज गुरूब होने से पहले ये मच्छर आपको काट सकता है। अगर आपको अचानक तेज बुखार, शदीद सर दर्द, जिस्म और जोड़ों में दर्द, मतली या कमजोरी महसूस हो, तो फौरन डॉक्टर से रुजू करें। डेंगू का मच्छर साफ पानी में पैदा होता है, इसलिए घर और इर्द गिर्द कहीं भी पानी जमा न होने दें। पानी की टैंकियों को ढांप कर रखें, गमलों और कूलर का पानी बाकायदगी से तब्दील करें, लंबी आस्तीन वाले कपड़े पहने, मच्छर मार स्प्रे और मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। याद रखें, एहतियात ही डेंगू से बचाव का बेहतरीन तरीका है। डेंगू से बचाओ, आपकी एहतियात, आपकी हिफाजत।
0: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
6: पाकिस्तान में व्हाट्सएप हैकिंग के वाकयात में खतरनाक हद तक इजाफा हो चुका है। रोजाना आम शहरी, बुजुर्ग, खवातीन, तुलबा और कारोबार से वाबस्ता अफराद अपने व्हाट्सएप अकाउंट से महरूम हो रहे हैं। इस वीडियो में हम आपको दो अहम बातों पर रहनुमाई फराहम करेंगे। अगर आपका व्हाट्सएप हैक हो चुका है तो इसे वापस कैसे हासिल किया जा सकता है और मुस्तकबिल में व्हाट्सएप को दोबारा हैक होने से कैसे महफूज रखा जा सकता है। आइए देखते हैं व्हाट्सएप हैक कैसे होता है। पाकिस्तान में आमतौर पर व्हाट्सएप हैकिंग के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले तरीके। आपको व्हाट्सएप या किसी करने वाले के नाम से पैगाम आता है कि आपका अकाउंट वेरीफाई करना है या ये 6 हिंसों का कोड भेज दे। बाज़ औकात ये पैगाम किसी दोस्त या रिश्तेदार के नंबर से आता है जिसका अकाउंट पहले ही से हैक हो चुका होता है। लोग लाइल्मी या जल्दी में 6 हिंसों का तस्दीकी कोड शेयर कर देते हैं। बस इसी एक गलती से हैकर आपके व्हाट्सएप का मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लेता है। याद रखें, व्हाट्सएप का तस्दीकी कोड कभी भी किसी के साथ शेयर नहीं किया जाता। ना व्हाट्सएप खुद मांगता है, ना कोई अदारा और ना कोई दोस्त। अगर आपका व्हाट्सएप हैक हो जाए तो फौरन क्या इकदाम उठाने चाहिए। अगर आपका व्हाट्सएप हैक हो चुका है तो घबराए नहीं, अपने मोबाइल फोन से व्हाट्सएप डिलीट करें और दोबारा इंस्टॉल करें। साथ ही अपने दोस्तों और खानदान को किसी और नंबर से इतला दें कि अगर आपके नाम से कोई मशकूक पैगाम आए तो इस पर हरगिज यकीन ना करें। अपना वही मोबाइल नंबर दर्ज करें जो व्हाट्सएप पर रजिस्टर्ड था। व्हाट्सएप आपको SMS या कॉल के जरिए 6 हिंसों का तस्दीकी कोड भेजेगा। ये कोड दर्ज करें। ज्यादातर केसेस में इसी मरहले पर हैकर की रसाई खत्म हो जाती है, क्योंकि व्हाट्सएप एक वक्त में सिर्फ एक डिवाइस को इजाजत देता है। अगर तस्दीकी कोड ना आ रहा हो ہو یا پن لگا دیا گیا ہو. اگر ہیکر نے آپ کے اکاؤنٹ پر ٹو اسٹیپ ویریفیکیشن پن لگا دیا ہے اور آپ لاگ ان نہیں ہو پا رہے, واٹس ایپ آپ کو آپشن دیتا ہے 7 دن بعد دوبارہ کوشش کریں. 7 دن بعد واٹس ایپ آپ کو بغیر پن کے لاگ ان کرنے کی اجازت دیتا ہے, لیکن صرف اسی نمبر پر. اس دوران یہ باتیں لازمی یاد رکھیں, سم کارڈ اپنے پاس اور فون رکھیں, نمبر بند یا سسپینڈ نہ ہونے دیں, واٹس ایپ بار بار انسٹال نہ کریں, ای میل کے بغیر اکاؤنٹ فعال. اگر آپ نے ای میل ایڈریس شامل نہیں کیا اور پن بھی یاد نہیں, واٹس ایپ پھر بھی 7 دن بعد آپ کا اکاؤنٹ فعال کر دیتا ہے, بشرطیے کہ سم کارڈ آپ کے پاس ہو. سم کارڈ سب سے اہم ہے. اضافی طور پر آپ اپنے نمبر اور مسئلے کی تفصیل کے ساتھ واٹس ایپ سپورٹ کو ای میل بھی کر سکتے ہیں. رابطوں کو فوری اطلاع دیں. اکاؤنٹ بحال ہوتے ہی اپنے تمام رابطوں کو پیغام بھیجیں, میرا واٹس ایپ ہیک ہو گیا تھا, براہ کرم پچھلے کسی بھی پیغام یا درخواست کو نظر انداز کریں. اس سے آپ کے دوست اور خاندان مزید نقصان سے بچ سکتے ہیں. اب دیکھتے ہیں مستقبل میں ہیک ہونے سے خود کو کیسے بچایا جا سکتا ہے. ٹو اسٹیپ ویریفیکیشن لازمی فالو کریں. سیٹنگز, اکاؤنٹ, ٹو اسٹیپ ویریفیکیشن, یہاں ایک 6 ہندسوں کا پن سیٹ کریں جو صرف آپ کو یاد ہو. ای میل ایڈریس ضرور شامل کریں. ای میل شامل کرنے سے پن دوبارہ سیٹ ہو سکتا ہے. اکاؤنٹ تیزی سے فعال ہو جاتا ہے, ہیکنگ کے امکانات کم ہو جاتے ہیں. تصدیقی کوڈ کبھی کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں, چاہے پیغام دوست کا ہو یا کسی ادارے کے نام سے ہو. کوڈ شیئر کرنا سیدھا اکاؤنٹ ہیک ہونے کے برابر ہے. جعلی لنکس اور آفر سے بچیں. مفت انٹرنیٹ انعامات, سرکاری یا بینک کے جعلی پیغامات سے ہوشیار رہیں. ایسے لنکس پر کلک نہ کریں. واٹس ایپ لنک ڈیوائسز چیک کریں. سیٹنگز, لنک ڈیوائسز, اگر کوئی نامعلوم ڈیوائس نظر آئے تو فوراً لاگ آؤٹ کریں. فون لاک اور بایو میٹرک استعمال کریں. اگر فون محفوظ نہیں ہوگا تو واٹس ایپ بھی محفوظ نہیں رہے گا. پن, فنگر پرنٹ یا فیس لاک ضرور فالو کریں. یاد رکھیں, واٹس ایپ ہیکنگ کوئی تکنیکی جادو نہیں بلکہ زیادہ تر انسانی غلطی کی وجہ سے ہوتی ہے. تھوڑی سی آگاہی اور احتیاط سے آپ خود کو محفوظ رکھ سکتے ہیں, اپنے گھر والوں کو بچا سکتے ہیں اور اپنے دوستوں کو نقصان سے بچا سکتے ہیں.
3: یہ مفاد عامہ کا پیغام آپ تک پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے پیش کیا گیا ہے.
7: FM 24/7/365

0: 1:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: जब बात आपकी सेहत की हो तो खालिस्तान बहुत अहमियत रखता है। शोबे मयार की सख्त जांच पड़ताल करता है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हर दवा असली और काबिले भरोसा हो। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शोबे जर्मनी पिछले 75 सालों से सेहतमंद पाकिस्तान के लिए कोशां।
0: This program is brought to you by
2: Step School Se Foundation Ho Strong. Call now at 0311117837
3: and Shaukat Khanam Karachi ki takleef.
0: Like us on facebook.com/fm247365
4: fm247365. This is your music.
0: Happy Hour with Nadeem Akhtar.

0: वेलकम बैक आएंगे ये रात शबनम स्ट्रिंग्स का लास्ट एल्बम था तकरीबन मेरा ख्याल ही एंड आई होप कि आपको पसंद आया होगा. हमारी प्यारी सी आंटी को भी बड़ा पसंद है. मैसेजेस आपके आ रहे हैं कि चाय स्पेस आपका नाम आपका मैसेज उसको सेंड कर रहे हैं आप 3636 पर. सवाल मैंने आपसे ये फ्लोट किया है ये पूछा है कि आपने ये बताना है जनरल नॉलेज का सवाल है कि टी बैग्स चाय के जो थैलियां होती हैं वो अक्सर आपने देखी होंगी जो गर्म पानी में डालकर चाय बनाकर पी जाती हैं. ये टी बैग्स कब ईजाद हुए और क्यों ईजाद हुए और जनाब आपके मैसेज के जनाब क्या हो गया भाई मैसेज कहाँ गए ये रहे मैसेज. रेहान का मैसेज हो गया था और जरीन कह रहे हैं कि अल्लाह आपकी तबीयत और सारी परेशानियां दूर करे. संजू के नाम कोई सॉन्ग कर दीजिएगा जरीन नूर. बिल्कुल कर रहे हैं. माई लवली ब्रदर कैसे हो फालूदे से भरा हुआ सलीम मेमन नजर नहीं आता है. हाँ ये बात तो सही है सलीम मेमन आ रहे हैं मगर कभी कभी आ रहे हैं. आइसक्रीम होती है नहीं खाली अखरोट नजर आता है. अच्छा ये शेर भेज दिए मेरा ख्याल है. फालूदे से भरा हुआ सलीम मेमन नजर आता है आइसक्रीम होती है नहीं खाली अखरोट नजर आता है. ये जो भी है इन्होंने नाम नहीं लिखा बहुत ही आला. और जनाब लाला जान गजा इसलिए कहा कि मैं वहां से आया हूं एक मंथ हो गया है हमारी प्यारी कायनात बच्ची की वजह से गया था 2 साल पहले रमजान में. संजीदा को बहुत सलाम कह रहे हैं शकील रोशन साहब. अपनी बेटी की वजह से गए थे आप वहां. अच्छा वहां पर क्या हालात हैं ये भी जरा हमें बताइए ना यानी कि समझ रहे हैं ना आप. उस बुलंदी की खूबसूरती का सारा हुस्न उस हौसले और अजम में है जो इंसान को थकने और टूटने के बावजूद हारने नहीं देता. क्या बात है इतनी प्यारी प्यारी बात ये कहां से कर लेती हो. जाएंगे ना आप एक छोटी सी ब्रेक की जाने.
1: This program is brought to you by
2: Step School Se Foundation Ho Strong. Call now at 03111117837
3: and Shaukat Khanum Karachi Ki Takleef.
4: किसी भी इंसान के लिए सबसे अहम होती है उसकी सेहत.
5: किसी भी शख्स को देख के उसकी सेहत के बारे में अंदाजे ना लगाओ.
6: जी हाँ मुझे भी लोग मोटी कहते हैं मगर ऐसा नहीं कि मैं बहुत खाती हूँ.
5: हम बिना किसी तहकीक के बस बातें बनाने का फन जानते हैं. सामने वाले पर क्या गुजरी हमें से क्या.
6: मोटापा एक बीमारी है सिर्फ मीठा ना खाने से खत्म नहीं होगी. अपना BMI चेक करवाइए
4: यानी अपने वेट को अपनी हाइट की मुनासिबत से जांचें. वेट से आगे का सोचें.
7: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया.

वेलकम बैक सोनो। तो हम संजू का एक मैसेज पढ़ रहे थे, कौन सा था, उस बुलंदी की खूबसूरती का सारा हुस्न उसके हौसले और अजम को है जो इंसान को थकने और टूटने के बावजूद हारने नहीं देता। क्या बात है। और कह रही है, सुन रही हूँ, नाश्ता नहीं किया, सिर्फ चाय पी है दो कप, उफ अल्लाह। उदासी साथ है शो सुनकर, हो सकता है दिल कुछ बह गया, इंशाल्लाह जरूर बहेगा, बहेगा कह रहा हूँ। और आप बस साथ रहे, यकीन मानिए कि दिल लग जाएगा आपका। और कहती हैं कि शकील भैया जीते रहे, बहुत सारी दुआएं दी हैं, और जरूर मेरी शहजादी बहुत सा प्यार, ये कहा है संजू ने। और जनाब आगे बढ़ते हैं, मौशका गए हैं। कहती हैं, हमसे अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है। चाय अब खवातीन भी फैमिली के साथ पीने जाती हैं, हम भी जाते हैं, मगर मुझे चाय इतनी पसंद नहीं है। आप वो हैं जिनके बारे में मैं सोचा हुआ है कि अगर रोटी एक हुई तो हम दोनों आधी आधी कर लेंगे, हाय सो स्वीट, और अगर आधी हुई तो आप खा लेना और मैं अपने लिए पिज्जा मंगवा लूंगी। गुड है, गुड है। और कह रही है, हैंडसम, ये मेरे अपने दिल की आवाज है, किसी का मुत्तफिक होना लाजमी है। और कहती है, आवाज क्या है कि दुनिया में सबसे खूबसूरत क्या है, यकीनन तुम, और तुम्हारे बाद यकीनन तुम, और हमारे बाद फिर क्या रखा है दुनिया में, हाय हाय। मेरी दुनिया तो तुमसे शुरू होकर तुम ही पर खत्म हो जाती है, तुम्हारे बाद जो कुछ भी है वो दुनिया हो सकती है, मेरी दुनिया नहीं। वाह वाह वाह, इतनी अकलमंद हो गई हो तुम, इतनी खूबसूरत जो है कैफियत, वाह वाह वाह भाई, जीती रहे, मुस्कुराती रहे, आपके लिए ढेरों दुआएं हैं। पीर मोहम्मद इलियास साहब आ गए हैं और कह रहे हैं, भाई सुपर सुपर शो, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। अलीमुद्दीन यूसुफ जई साहब कह रहे हैं, वाजिबुल एहतराम मोहतरम नदीम अख्तर भाई साहब, अस्सलाम वालेकुम, प्लीज सज्जाद अली की आवाज में कोई सॉन्ग सुनवा दीजिए, बढ़िया। नसीम कुरैशी, अय्यूब आफरीदी, सैयद शेख खिताब गुल्लाला, इमरान रियाज, और आपके वाजिबुल एहतराम वालिद मोहतरम की खिदमत अकदस में मेरा अकीदत भरा सलाम पेश कीजिएगा, हर लम्हा दुआगो ख्वाहिशात के साथ। अलीमुद्दीन यूसुफ जई साहब एफ बी एरिया कराची से। जिंदगी में तो सभी वाह वाह वाह। और जनाब मैसेजेस तो आपके मेरे सामने हैं, मगर एम ही दिल कर रहा है कि ट्रैक की जानिब जाएं, तो अभी हम ये ट्रैक जो है ना, ये थोड़ा सा शोखो चंचल सा ट्रैक है, तो ये हम मुश्क को डेडिकेट करते हैं, ठीक है ना। हम सब की जानिब से मुश्क आपके लिए, एल्लो फड़ो।

Welcome back, Angie. Whistle baby, ऐसे मजर का ट्रैक आपने सुना और उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा. मैसेजेस आपके आ रहे हैं कि चॉइस पे आपका नाम आपका मैसेज उसको सेंड करें 3636 पर. और जनाब समी साहब भी आ गए हैं और कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम नदीम भाई, कैसे हैं आप? सलाम टू ऑल लिसनर्स. आज घर पर हूँ, अभी उठा था, दोस्त आ गए सुबह सुबह. एक अच्छा सा सॉन्ग आपकी पसंद का हमारे उनके लिए. वाह वाह वाह, बिल्कुल कर देंगे. आज मैंने नाश्ता नहीं किया है, दोस्तों के साथ घूमने आया हूँ कार में. वाह वाह वाह, माशाल्लाह से आज आप एक्टिव लग रहे हैं. लगता है नाश्ता टका कर करके. नाश्ता कहाँ करता हूँ यार, नहीं किया. मैं भी बस घर से चाय पी के निकला था. और सॉन्ग मत भूलिएगा, बिल्कुल नहीं भूलेंगे भाई, हम सॉन्ग जरूर चलाएंगे. लाला जान, वहां के हालात तो आप सब नेट पर देखते हैं, मगर वो सब एआई का कमाल है. गजा के हवाले से हमारे शकील रोशन बता रहे हैं. और मैसेज में मैं नहीं बता सकता वहां के हालात. और एक बात जरूर गजा के हवाले से बताएंगे कि 70% लोग जो हैं वो हाफिजुल कुरान है. वहां पर बहुत बेहतरीन कौम है और पाकिस्तानियों से भी इंतहा मोहब्बत करते हैं. बस अब दुआ करें कि अल्लाह ताला उनको आजादी मिले. और सब के लिए उन्होंने दुआ की है कि हमेशा शादो आबाद खुश रहें. आमीन सुमा आमीन. समी जान को बहुत प्यार कहा है शकील रोशन ने. और कायनात बच्ची जनाब, वो बच्ची बड़ी हो गई है, उसकी शादी हो गई और वो जा चुकी है. यानी कि समझ रहे ना आप, शकील रोशन भाई बड़े अरसे के बाद आए, यानी कि समझ रहे ना, तो इनको पता नहीं, हमने बता दिया. और आगे बढ़ते हैं जनाब. मुश्क कहती है हैंडसम अकलमंद नहीं हूं, बस कॉपी मारकर भेजा है. और वाह हैंडसम, इतने दिन बाद डेडिकेशन याद आ गई, थैंक्स भाई. अल्लाह जी जीती रहो, मुस्कुराती रहो, तुम्हारे लिए मुश्क बेइंतहा दुआएं.

अच्छा अच्छा अब आगे बढ़ते हैं और आपको एक और बहुत ही प्यारे से ट्रैक की जानकारी लेकर जा रहा हूँ और ये थोड़ा सा फरंगी ट्रैक है मगर खूबसूरत सा है, माहौल बना हुआ है, ये आपको सुनाते हैं, अच्छा लगेगा आपको।

वेलकम बैक कहेंगे। कौन लॉन बेबी सगुन से ये ट्रैक आपको रेमा और सलीना गोम्स का आपको अच्छा लगा होगा। बहुत पॉपुलर हुआ था भाई गाना, बहुत पॉपुलर हुआ था और जितना सुनो मजा आता है, जब भी सुनो अच्छी सी इसकी एक मेलोडी है। तो जनाब आगे बढ़ते हैं, हमारी प्यारी सी बहन जरीन नूर ने जवाब दिया है कि सवाल का जवाब है अच्छा भाई जवाब आपका दुरुस्त मान लेते हैं और तफसील लिखी है इसने, जीती रहो मेरी प्यारी सी बहन और बड़ी बात है माशाल्लाह। उम्मीद नहीं थी कि मुझे कोई इसका जवाब देगा मगर आपने बिल्कुल दुरुस्त जवाब दिया है, अपने हिसाब से बिल्कुल दुरुस्त जवाब दिया आपने, किताबी तौर पर भी दुरुस्त जवाब दिया है, लेकिन मैं आपको कुछ तफसील भी बताऊंगा इस हवाले से। टी बैग के हवाले से मैंने सवाल किया है कि कब इजाद हुआ और क्यों इजाद हुआ। महनूर आ गई है हमारी बहना, कह रही है बाप आपको लाला को मुश्क और सबगुल संजू जरीन नूर सलीम मेमन भाई समी भाई और अमीन को अस्सलाम वालेकुम पखैर रागले अस्तड़े मशे एंड वेलकम दासियो खान। हमारे अयूब लाला जो है वो बहुत ज्यादा लगता है मसरूफ है, तो इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में, अल्लाह ताला उनको जो है उनके तमाम काम जो है वो मुकम्मल फरमाए, सिर्फ उनके ही नहीं सबके हैं जी ते हैं जी। और आगे बढ़ते हैं, संजू खेती है कहां गया। किसी को माफ करने का मतलब ये नहीं कि उसके गले उसे गले लगाया जाए, सिर्फ एक अहद करना होता है जो अजियत उसने मुझे दी वो मैंने उसको नहीं देनी। वाह वाह वाह, ये जो है निमरा अहमद के नावल नमल से इक्तबास है। किसी को माफ कर देने का ये मतलब नहीं है कि उसको गले से लगा लिया जाए, सिर्फ एक अहद करना होता है कि जो अजियत उसने मुझे दी है वो मैंने उसको नहीं देनी। यही बड़कपन होता है, यही बड़ा काम होता है। चले जनाब इसी बात पर हम बढ़ते हैं आगे एक बहुत प्यारे से ट्रैक की जानिब और आवाज जो है वो है आयमा बेग की और ये ट्रैक हम हमारी प्यारी सी बहन जरीन नूर की जानिब से डेडिकेट करेंगे। संजू आपको आपका मैसेज पढ़ा है तो एल्लो फड़ो।

वेलकम बैक कहेंगे सुने हो आप सबको जिन्होंने अभी भी ज्वाइन किया है उनको बता दें जनाब मेरा नाम है नदीम अख्तर और प्यार से आप लोग मुझे कहते हो ए सोने हैप्पी आर्स में मैं हूँ आपके साथ आपका और मेरा साथ है तीन बजे तक और तीन बजे तक ये हल्ला गुल्ला जारी और सारी है प्यारी प्यारे से ट्रैक सुन रहे हैं आप सवाल मैंने एक फ्लोट किया हुआ है उसका दे रहे हैं आप जवाब सवाल ये है कि टी बैग से चाय की थैली जो होती है वो कब इजाद हुई और क्यों इजाद हुई अच्छा सवाल को गौर किया करें क्यों इजाद हुई ये बोला किसने इजाद की ये मैंने नहीं कहा हाँ किसने की है ये भी अगर आप बता दें जैसे हमारी प्यारी सी बहन जरी नूर ने बताया तो बड़ी अच्छी बात होगी लेकिन जो मेन बात है वो ये कब इजाद हुआ और क्यों इजाद हुआ भाई और महानूर कहती है बाबू मुझे किसी ने जवाब देना नहीं सिखाया अच्छा बाबू अच्छा ये इन्होंने मजाक ना है मैंने सवाल किया ना तो जवाब देना सिखाया नहीं वरना मैं अभी जवाब दे देती भाई बहुत खूब और कह रही है कि मेरी जानिब से लाला को एक सॉन्ग जबरदस्त सा डेडिकेट कर दीजिएगा बिल्कुल करेंगे यानी कि समझ रही है ना इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में और आगे बढ़ते हैं शुक्रिया शकील भाई ये समी कह रहे हैं शकील भाई और नदीम भाई अरे भाई हाँ ये हो जाता है कभी गलती से गाने के बारे में कह रहे हैं नदीम भाई मेरे गाने का क्या हुआ भाई आपकी होने वाली दुल्हन को आपकी जानिब से अभी गाना डेडिकेट कर रहा हूँ यार क्यों परेशान हो यार तुम अच्छा संजू ने एक बात कही थी उस पर थोड़ी सी अब मैंने चर्चा करनी है इनकी बात बीच में मैं इस वजह से भी रोक लेता हूँ उन्होंने कहा कि हम लोग घर वालों के साथ कहाँ गया इनका वो मैसेज मैं जरा देख लूँ

वेलकम बैक कहेंगे सुनो आप सबको, मेरा बुलबुल सो रहा है। ब्यूटीफुल ट्रिक जो कि अलीमुद्दीन यूसुफ सही साहब आपको डेडिकेट किया, उम्मीद करता हूं पसंद आया होगा। और जनाब मैसेजेस कर रहे हैं आपके चाय स्पेस, आपका नाम आपका मैसेज उसको सेंड कर रहे हैं आप 3636 पर।

वेलकम बैक कहेंगे सुने हो आप सबको, जिन्होंने अभी अभी ज्वाइन किया उनको बताते जनाब मेरा नाम नदीम अख्तर, प्यार से आप लोग मुझे कहते हो एन एस सुने, हैप्पी आवर्स में मैं हूँ आपके साथ, आपका और मेरा साथ है तीन बजे तक, और तीन बजे तक ये अल्लाह गुल्ला जारी हो सारी। इसमें शामिल होने का बहुत ही आसान सा तरीका, अपने मोबाइल के राइट मैसेज में जाइए, के चाय लिखिए, स्पेस दीजिए अपना प्यारा सा मैसेज और उसको सेंड कर दीजिए 3636 पर। अच्छा, सवाल जो मैंने पूछा है अभी कुछ ही लम्हों के बाद जो है मैं आपको उसका जवाब भी दूंगा। सवाल ये पूछा है कि मैंने टी बैग, चाय की जो छोटी सी थैलियां नहीं होती खुश्क जिससे हम चाय बनाते हैं, पोर्टेबल होता है जो, वो कब इजाद हुई और क्यों इजाद हुई, किसने नहीं क्यों इजाद हुई, ये आप मुझे बताना है 3636 पर। और हमारे सलीम मोहन साहब आ गए हैं, माशाल्लाह से क्या बात है भाई, उठ गए हो क्या, यानी सलाम सुनो, आपके छोटे भाई नवीद से मुलाकात हुई, उन्होंने कहा कि मेरे हाथ में बहुत दर्द है, सुनो मुझे तो दाल में कुछ काला लगता है, कहीं वाइफ से झगड़ा तो नहीं हुआ, आप उनसे जरा पूछ के बताएं। सलीम मेमन, वैसे सलीम मेमन भाई इस हवाले से आपको बड़ी प्रैक्टिस है, आपका दिमाग फौरन मार गया है, किसी ना किसी टाइम पर आपको हो सकता है हाथ पर चोट लगी हो, खैर हो सकता है यार कोई और वजह भी हो। खैर, हमारे छोटे भाई साहब नवीद साहब कैसे हैं आप, खैरियत से हैं, अल्लाह ताला आपको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। वैसे हाथ में चोट कैसे लग गई भाई, एक दिन मैंने अपना दिमाग चलाया, चलाते चलाते इतनी दूर चला गया कि आज तक वापस नहीं आया हूं। ये मेमन, हमारे सलीम मेमन साहब ही, अच्छा इनामुल हक ने दोबारा से गाना लिख दिया, भाई ये गाना इस तरह नहीं ढूंढ सकता इनामुल हक भाई, आप समझा करें यार, मतलब जब वो सिंगर का नाम हो या फिल्म का गाना हो तो समझ में आ जाता है, ढूंढने में आसानी होती है, वरना बड़ा मुश्किल होता है, यानी कि समझ रहे हैं ना आप। इस्लाम अफरीदी भाई जान कह रहे, नदीम भाई अस्सलाम वालेकुम, खिदाब लाला को सलाम, आयशा जी को सलाम, पश्तो का सॉन्ग चलाओ ना यार, बिल्कुल चलाएगा, अभी चलाएगा, अभी हम जिस ट्रैक की जानब जा रहे हैं जनाब, ये हमारी प्यारी सी बहन मानूर की जानब से हमारा लाला जो है यार, हमारा लाला कौन, अयुब लाला को हम डेडिकेट करेगा, उसके साथ साथ जनाब हमारे प्यारे से इस्लाम अफरीदी भाई भी आ गए हैं जी, तो ये ट्रैक एलो फड़ो।

वेलकम बैक कहेंगे जनाब। टी बैग के हवाले से डिटेल आपको बता रहा था, बस सिंपल सी बात ये है यार। वैसे मैं आपको डिटेल तो बड़ी लंबी चौड़ी बता सकता हूँ, इसकी पूरी एक तारीख बनी हुई है। बस 1908 वैसे तो अगर पहली बाकायदा इजाद जो है 1901 को हुई थी, फिर मशहूर जो है इत्तफाकिया इजाद जो है वो 1908 को हुई, और फिर ये सिलसिला चलते चलते 1929-1944 तक जो है वो बड़ा ज्यादा पॉपुलर हो गया सिलसिलाकार। तो बस इतना ही बहुत है। अच्छा जी, मानवर कह रहे हैं अल्लाह हाफिज। क्यों भाई? अच्छा सर, इनका पहले मैसेज भी आया, मैं समझा इसे एमी अल्लाह हाफिज कह दी है इन्होंने। और मैसेजेस की जाने बढ़ते हैं। इनाम कह रहे हैं भाईजान अच्छा सिया वाला सॉन्ग डेडिकेट कर दें। अच्छा जी इनाम भाई, अरे वक्त भी बड़ा कम रह गया और मैं अभी चलाता हूं थोड़ी देर के लिए। मुजम्मिल कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम भाईजान, मुझे ये मुजम्मिल भाई समझ में नहीं आ रहा आपने क्या लिखा है भाई। अच्छा जी, हलक में पत्ती ना जाए इस वजह से ये इजाद हुई थी। क्यों हुई थी, कब हुई थी मुजम्मिल भाई, ये मैंने पूछा था और उसका जवाब भी मैंने आपको बता दिया है। थैंक यू कहा है मानूर ने, और कह रही है बाबू अच्छा भी आपकी भी ये मैसेज समझ में आ रहा। खैर इन्होंने थैंक्स कह दिया है और अल्लाह हाफिज भी कह दिया है। सुनो मेरी तरफ से इनाम उल हक को सजाद अली का कोई ट्रैक, सजाद अली का तो चला दिया भाईजान। अभी मैं इनाम उल हक भाई को की जानिब से आपको ट्रैक डेडिकेट कर रहा हूं और आपकी जानिब से इनाम उल हक को डेडिकेट कर रहा हूं। जल्दी जल्दी से थोड़ा थोड़ा जिया चला दूंगा। हैं जी ते हैं जी, एलो फड़ो।

ब्यूटीफुल ट्रैक, और उम्मीद करता हूँ कि आप दोनों को पसंद आ गया होगा, हमारे प्यारे से सलीम अमन को भी और इनाम उल हक को भी। सवाल का जवाब जनाब मैंने आपको दे दिया और उम्मीद करता हूँ कि आज का शो आपको पसंद आया होगा। हमारी प्यारी सी बहन फरीदा बुरहानुद्दीन कह रही है, भाई आपकी वजह से मेरी मुझे इज्जत मिलती है और मेरा हौसला बुलंद होता है। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे भाई। मेरी बहन आप हैं ऐसी प्यारी सी इज्जत के काबिल, इसमें मेरा कोई वो नहीं है अमलो दखल, ये अल्लाह ताला का करम है आप पर। अपना बहुत ख्याल रखिएगा आप भी। अच्छा सुनो, अब आप लोगों से इजाजत भी चाहिए और जाते जाते बहुत ही प्यारे से दो ट्रैक जो है वो डेडिकेट करता हुआ जा रहा हूँ। पहला ट्रैक जनाब संजू के लिए है और दूसरा ट्रैक हमारी प्यारी सी बहन जो है नौरीन भैना के लिए है। इंशाल्लाह ताला जनाब आप लोगों से मुलाकात होगी कल रात को। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। नहीं अल्लाह हाफिज।

0: your location for maximum music. FM 100's time check. It's 3 p.m. This program was brought to you by
1: Step School Se Foundation Ho Strong. Call now at 0311-111-7837.
0: And
2: Shaukat Khanam, Karachi Ki Takleef.
3: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है एनपीएस तीन की ताकत के साथ। इसमें मौजूद फास्फोरस ने जड़ों की बढ़ोतरी और फैलाव में इजाफा और सल्फर नाइट्रोजन की आफादियत को बढ़ाए, जिससे फसल को इब्तदाई मरहले से ही जरूरी गजाई अज्जा मिले। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। तीन की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
0: लाइक अस ऑन facebook.com/fm247365 fm247365.
4: Let's celebrate
5: 31 years of memory, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
4: Assalamu alaikum Pakistan. Let's celebrate the journey.
6: Karachi, Lahore, Islamabad, Hyderabad, Rahim Yakam, Malta, Abbottabad, Gujarat, Jhelum, across Pakistan. This is FM 100.
7: Assalamu alaikum Pakistan.
8: 1, 2, 1, 2, 3, hit.
9: Everybody says,
10: Masti karne ka.
9: Everybody say joy.
11: Master in the house.
9: Come into my world.
11: Come and join it.
10: So listen to Music Masti.
12: Music Masti.
13: Assalamu alaikum Pakistan. Assalamu alaikum Karachi.

आपकी मोहब्बत में आपके पास आना होता है, आपकी दुआएं भी समेटनी होती हैं। सो आपकी मोहब्बतों में मैं आपके सामने हाजिर खिदमत हूँ। कुछ इसी तरह की आवाज को आपने झेलना होगा, बर्दाश्त करना होगा, लेकिन म्यूजिक आपकी अपनी होगी, आपकी अपनी पसंद होगी। तरीकाकार बहुत आसान, जो पुराना है लेकिन बड़ा सुहाना है। अपने राइट मैसेज में जाइए, के एच आई लिखिए, स्पेस दीजिए, अपना मैसेज टाइप कीजिए और 3636 पर रवाना कीजिए। इसके साथ साथ facebook.com/ आरजे महफूज पर आप मैसेज कर सकते हैं। प्रोग्राम में शामिल करेंगे आपकी पसंद का खूबसूरत सा गाना, सुनिए और वापस आइए।

0: musty. Music musty.
1: You are listening. You are listening. Music musty. Musty. Musty.
2: जी दोस्तों, आप सुन रहे हैं म्यूजिक मस्ती और मुझे कहते हैं महफूज। आज सिलसिला ये रहेगा कि आपके लिए मैं ज्यादा से ज्यादा गाने प्ले करूंगा और मैं थोड़ा सा कम बोलूंगा, आपके मैसेजेस पढ़ूंगा, गाने का तारुफ कराऊंगा और आपके लिए खूबसूरत से गाने पेश करूंगा। अभी जिन्होंने एफ 100 पाकिस्तान ट्यून इन किया है, मैं उनको बताता चलूं, यह रिक्वेस्ट शो है, फरमाइशी प्रोग्राम है और म्यूजिक मस्ती नाम है इस प्रोग्राम का, मुझे महफूज कहते हैं। अपने राइट मैसेज में जाइए, के चाय लिखिए, स्पेस दीजिए, अपना मैसेज टाइप कीजिए, 3636 रवाना कीजिए। इसके साथ साथ facebook.com/RJMahfooz पर या मुझे मैसेजेस कर सकते हैं, बता सकते हैं कि आपको कौन सा गाना सुनना है। मीनवाइल आपके लिए एक और बहुत ही खूबसूरत सा गाना शिराज उप्पल की आवाज।

0: You are listening. Music. Masti.
1: It's 3:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
2: आम चीजों पर समझौता क्यों करें? शॉबे सिंगल रेमेडीज मुस्तना जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरती बेहतरीन नज़ा लाए हैं ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके. डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शॉबे सिंगल रेमेडीज, भरोसे, देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल.
3: कहीं फिर से रहमो चाचा, अपना डांगा लेकर न आ जाए. वो मुझे अपनी गोद में बिठाएंगे. मैं अम्मी को भी बताने से डरती हूँ.
4: आम तौर पर यही समझा जाता है कि बच्चों के साथ जिनसी बदसलूकी सिर्फ अजनबी करते हैं, मगर ऐसा नहीं है. दरअसल ये वो लोग होते हैं जिन पर माँ बाप आंख बंद करके भरोसा कर लेते हैं. बच्चों को समझाएं, चाहे अपना हो या पराया, इनकी मर्जी के खिलाफ कोई इन्हें छुए तो आपको फौरन बताएं. जिनसी बदसलूकी के बचाव के लिए बच्चों में अपनी हिफाजत करने की समझबूझ पैदा करें. पाकिस्तान का आईन और कानून हर बच्चे को जिस्मानी और नफसियाती हक फराहम करता है. तहफ्फुज हर बच्चे का हक है. आए इसे यकीनी बनाएं. मजीद मालूमात और मशवरे के लिए हेल्प लाइन 1099 पे कॉल करें. वजारत इंसानी हुकूक, हुकूमत पाकिस्तान.
5: मुफाद आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया.
6: FM 100 लाइक अस ऑन facebook.com/FM247365. FM 247365.
0: You are listening. Music. Masti.

0: You are listening to Music Masti.
1: आप सुन रहे हैं म्यूजिक मस्ती और मुझे कहते हैं महफूज। खूबसूरत सा गाना राहत फतेह अली खान की आवाज में आपने एंजॉय किया। आपके मैसेजेस आसमा फरीद बहुत बहुत शुक्रिया, वालेकुम असलाम, आपके सुनने और पसंद करने का शुक्रिया। साजिद हमें मैसेज कर रहे हैं, सलाम कर रहे हैं, वालेकुम असलाम, बहुत बहुत शुक्रिया सुनने और पसंद करने के लिए। समीरा ने हमें मैसेज किया, सलाम करें, वालेकुम असलाम, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी, आपकी फरमाइश मैंने नोट कर ली है। कबीर मैसेज कर रहे हैं, सलाम कह रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया सुनने और पसंद करने के लिए। सलीम ने हमें मैसेज किया है, सलाम कहा है, वालेकुम असलाम, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी, और आपकी भी फरमाइश नोट कर ली है। महानूर हमें मैसेज करी है, सलाम कह रही है, बहुत बहुत शुक्रिया सुनने और पसंद करने के लिए, आपकी भी फरमाइश मैंने नोट कर ली है। बिलावल मैसेज कर रहे हैं, सलाम कह रहे हैं, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी एंड वालेकुम असलाम, आपकी भी फरमाइश मैंने नोट कर ली है, पूरी करने की भरपूर कोशिश करेंगे। खाना हमें मैसेज करी है, सलाम कह रही है, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी, और समी ने हमें मैसेज किया, वालेकुम असलाम, बहुत बहुत शुक्रिया सुनने और पसंद करने के लिए, आपकी भी फरमाइश मैंने नोट कर ली है और पूरी करने की भरपूर कोशिश करेंगे। वारिस बेग की आवाज, बहुत ही खूबसूरत मेलोडी। कल शब देखा मैंने चांद झरोखे में, उसको किया सलाम तुम्हारे धोखे में।

0: You are listening. Music. Musti. Musti.
1: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार है, इसीलिए सोना लाया है NPS तीन की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे वो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। तीन की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
2: 100 FM।
3: छम छम छम किताबें लेके निकले हम, अम्मी ने कहा ना रुकना तुम, रोज रोज आगे बढ़ते रहे हम।

जी ऐसा कोई शक नहीं है कि आप सुन रहे हैं म्यूजिक मस्ती और मुझे कहते हैं महफूज। हम आपके साथ साथ मौजूद हैं और एफएम 100 पाकिस्तान की नशरियात कराची स्टूडियो से आप सुन रहे हैं। इसके अलावा आप पूरे पाकिस्तान में हमें सुनते हैं fm100pakistan.com पर। अगर आप एंड्रॉयड यूजर हैं तो आप हमें एफएम 100 पाकिस्तान की एप्लीकेशन डाउनलोड करके बासानी सुन सकते हैं। हमारा आपका साथ रहता है हर संडे दोपहर 3 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक एफएम 100 पाकिस्तान से। और यकीनन ये प्रोग्राम जो मैं आपके लिए पेश करता हूं, ये साल हर साल से मैं आपके लिए पेश करता आया हूं और आपकी मोहब्बतों के साथ मैं यहां पर मौजूद रहता हूं। और आज हमारी कोशिश यही है कि हम कम बोलें, आपको ज्यादा से ज्यादा गाना सुनवाएं। शामिल करेंगे प्रोग्राम में आप ही की पसंद का एक खूबसूरत सा गाना।

0: It's time to turn up the volume and kick the boredom out the door. This is FM 100 Pakistan.
1: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार है, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
2: बच्चों का ऑनलाइन तहफ्फुज आपकी जिम्मेदारी है। अपने बच्चों को ऑनलाइन राब्तों का महफूज तरीका इस्तेमाल सिखाएं। इंटरनेट के जरिए खेलों, तफरी और तालीमी सरगर्मियों में शामिल होने के फवायद जरूर हैं, लेकिन इसमें नामुनासिब मवाद, साइबर बुलिंग और दीगर ऑनलाइन नुकसानात जैसे मुमकिन खतरात भी मौजूद हैं। वालिदैन और असातिज़ा की जानिब से बच्चों की निगरानी और रहनुमाई न होने की सूरत में बच्चे बासानी मनफी सरगर्मियों का शिकार हो सकते हैं। वालिदैन को अपने बच्चों की ऑनलाइन सरगर्मियों के हवाले से आगाह और होशियार रहने की जरूरत है। बच्चों को नुकसानदेह मवाद जैसे नफरत अंगेज तकरीर, गुस्ताखाना और फहाश मवाद वगैरह अपलोड और शेयर करने के कानूनी नतायज के हवाले से भी शऊर और आगाही इंतहाई अहमियत की हामिल है। PTA की वेबसाइट पर पेरेंटल कंट्रोल सॉफ्टवेयर की एक फहरिस्त दस्तियाब है, ताकि वालदैन अपने बच्चों की ऑनलाइन सरगर्मियों की निगरानी करते हुए उन्हें ऑनलाइन नुकसान से महफूज रखें। www.pta.gov.pk। मुफाद आमा के लिए ये पैगाम FM 100 और हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
3: 100 FM।
4: हाई फ्रेंड्स, आई एम मिकाल ज़ुल्फ़िकार एंड टूडे आई एम नॉट स्पीकिंग टू यू एज अ पब्लिक फिगर बट एज समवन हू केयर्स अबाउट योर फ्यूचर। We all dream of success and happiness, but drugs are silently destroying our dreams, lives, and our families. The Anti-Narcotics Force, the ANF, is bravely fighting this battle, but they can't fight it alone. They need your help and ours. Let's fight this together. Say no to drugs, and let's stand together.
2: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
5: फ्रॉड और जाली पैगामात से होशियार रहें। फ्रॉड करने वाले जाली पैगामात और कॉल्स के जरिए आपकी जाती या माली मालूमात हासिल करने की कोशिश करते हैं। ऐसे पैगामात पर बिल्कुल यकीन न करें जिनमें इनाम, अकाउंट बंद होने या आपको आपकी जाती मालूमात की वेरिफिकेशन का कहा जाए। याद रखें, ये फ्रॉड भी हो सकता है। आइए जानते हैं फ्रॉड के आम तरीके। PTA बैंक या सरकारी अदारे का नुमाइंदा बनकर आपसे आपकी जाती मालूमात तलब करना, जाली कोरियर या हुकूमती स्कीमों का नाम इस्तेमाल करते हुए आपको झांसा देना, आपको मशकूक लिंक्स या QR कोड्स भेजना। याद रखें, PTA बैंक या कोई भी सरकारी अदारा कभी भी फोन, ईमेल या पैगाम के जरिए आपसे पासवर्ड, OTP या CNIC नहीं मांगता। लिहाजा किसी भी मशकूक लिंक पर हरगिज क्लिक न करें और अपनी मालूमात हरगिज किसी के साथ शेयर न करें। और अगर कोई फ्रॉड कॉल या पैगाम वसूल हो, इसका जवाब मत दें। अपनी शिकायत का इंदराज complaint.pta.gov.pk या PTA CMS मोबाइल ऐप पर रिपोर्ट करें या PTA की हेल्पलाइन 0800-55055 पर अपनी शिकायत का इंदराज करें। व्हाट्सएप पर मौसूल होने वाला पैगाम बराह रास्त व्हाट्सएप को रिपोर्ट करें। इसके अलावा साइबर क्राइम के हवाले से आप अपनी शिकायत का इंदराज 1799 या complaint.nccia.gov.pk पर भी कर सकते हैं। बैंक फ्रॉड के लिए cpd.helpdesk.sbp.org.pk पर विजिट करें। याद रखें, आपकी आगाही ही आपका तहफ्फुज है। डिजिटल दुनिया में महफूज कदम, पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी।
6: ये मुफाद आमा का पैगाम आप तक पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की जानिब से पेश किया गया है।
7: facebook.com/fm247365 fm247365
8: You are listening to music musti.
9: All right, chuke hain wapas, aap sun rahe hain music musti aur mujhe kehte hain mehfooz। बारी है आपके मैसेजेस की और मूव करते हैं आपके मैसेजेस की तरफ। अमरीन ने हमें मैसेज किया है, सलाम का है, शो इज गुड, और आपने गाने की फरमाइश की है, मैंने नोट कर ली है। इखलाक हमें मैसेज कर रहे हैं, सलाम कह रहे हैं, आपने कहा हैप्पी संडे और पहली मरतबा सुन रहे हैं, आपको खुशामदीद कहेंगे। माहिरा हमें सुन रही है और आपने कहा है गुड शो, नाइस पिक, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अरशद हमें मैसेज कर रहे हैं, सलाम कह रहे हैं, वालेकुम असलाम, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी, आपकी भी फरमाइश मैंने नोट कर ली है। निदा हमें मैसेज करी है। निदा बहुत बहुत शुक्रिया सुनने और पसंद करने के लिए, आपकी भी फरमाइश मैंने नोट कर ली है। सूफिया हमें मैसेज करी है, सलाम करी है, वालेकुम असलाम, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। अदनान हमें मैसेज कर रहे हैं, अदनान बहुत बहुत शुक्रिया सुनने और पसंद करने के लिए और आपकी फरमाइश मैंने नोट कर ली है, पूरी करने की भरपूर कोशिश करेंगे। जवेरिया हमें मैसेज करी है, वालेकुम असलाम, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी, बहुत बहुत शुक्रिया आपके सुनने और पसंद करने के लिए। यास्मीन वालेकुम असलाम, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी, आपके भी शुक्रिया और साथ साथ आपकी फरमाइश मैंने नोट कर ली है। और फरीन हमें मैसेज करी है, फरीन वालेकुम असलाम, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। एक और गाना हम प्रोग्राम में शामिल करेंगे और आपकी पसंद का गाना है ये।

0: You are listening. You are listening. Music. Masti.
1: FM 100's time check. It's 4 p.m.
2: जरा बहन जरा बात तो सुनो, हटो पीछे, भागो।
3: अहमद हटो वहां से।
4: हादसे अचानक ही हुआ करते हैं, घबराए नहीं, समझदारी से काम ले। सबसे पहले कुत्ते के काटे जख्म को 20 मिनट तक साफ पानी और आम साबुन से धोएं। इसके बाद करीबी अस्पताल जाकर डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाएं। करीबी एंटी रेबीज सेंटर की मालूमात के लिए 1122 पर राबिता करें। महकमा सेहत, हुकूमत सिंध।
5: facebook.com/fm247365 fm247365 fm100
6: 31 saal fm100 aapki awaaz. Assalamu alaikum pakistan.
7: Assalamu alaikum pakistan.
0: Music.

और भाई राजू कहे वापस और आप सुन रहे हैं म्यूजिक मस्ती मुझे कहते हैं महफूज और प्रोग्राम सेकंड हाफ में दाखिल हो चुका है। चार बज चुके हैं और चार बजे से लेकर शाम पांच बजे तक हमारा आपका साथ रहेगा। इस साथ को यकीनन आपने मजीद खूबसूरत बनाना है, जैसे तीन से चार आपने ढेर सारी फरमाइश की है, मुझसे खूबसूरत तरीन फरमाइश की है, वैसी फरमाइशें आपने मुझसे करनी है। आज हम ज्यादा से ज्यादा आपकी फरमाइशें पूरी करेंगे, कम बोलेंगे और आपके लेकिन मैसेजेस जरूर पढ़ेंगे। तो अपने राइट मैसेज में जाइए, केचाए लिखिए, स्पेस दीजिए, अपना मैसेज टाइप कीजिए और 3626 पर रवाना कीजिए। इसके साथ साथ facebook.com/RJ महफूज पर भी आप मुझे मैसेजेस कर सकते हैं और बता सकते हैं कि आपको कौन सा गाना सुनना है। हम आपके लिए यहां पर मौजूद हैं।

Namaste. ऑलराइट, जबरदस्त ट्रैक आपने एंजॉय किया, राहत फतेह अली खान की आवाज में आफरीन आफरीन। जबरदस्ती म्यूजिक आपको सुनने को मिलती है सिर्फ और सिर्फ एफएम 100 पाकिस्तान से, और यकीनन एफएम 100 पाकिस्तान वो रेडियो स्टेशन है जहां पर आपकी फरमाइश हम फौरन पूरी कर देते हैं। आप हमारे बहुत ही स्वीट से लिसनर्स हैं और हमें बहुत ही डेडिकेशन के साथ सुनते हैं, पसंद करते हैं। तो अपने राइट मैसेज में जाएंगे कि एचआई लिखेंगे, स्पेस देंगे, अपना मैसेज टाइप करेंगे और 3666 पर रवाना करेंगे। इसके साथ साथ अगर आप फेसबुक यूजर हैं तो आप facebook.com/ आज महफूज लगाकर आप डायरेक्ट आ सकते हैं मेरा लिंक पे, या फिर सर्च कीजिए फेसबुक पे आज महफूज, आप मेरे प्रोफाइल पे आ जाएंगे, मेरा पिक्चर स्टेटस लगा है, आप वहां पर आइए और बताइए कौन सा गाना सुनना है, वीकेंड कैसा गुजरा, हॉलीडे कैसा गुजर रहा है, बाकी क्या प्लान्स हैं, वही फर्स्ट वर्किंग डे है कल, ये सारी बातें आप मुझसे कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ एफएम 100 पाकिस्तान के कराची स्टूडियो से। आपकी फरमाइश पर एक और खूबसूरत सा गाना हम आपके लिए पेश करेंगे। फाखिर की आवाज और साथ देंगी नताशा।

ऑलराइट, चुके हैं वापस, आप सुन रहे हैं म्यूजिक मस्ती और मुझे कहते हैं महफूज। जी बारी है आपके मैसेजेस की। रानी ने मैसेज करिए, सलाम करिए, वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया सुनने और पसंद करने के लिए। मकसूद हमें सुन रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया सुनने और पसंद करने के लिए, आपकी फरमाइश मैंने नोट कर ली है। सना सुन रही है, सना थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी, आपकी भी फरमाइश मैंने नोट कर ली है और यकीनन पूरी करेंगे हम। हिरा हमें सुन रही है, हिरा थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी एंड वालेकुम अस्सलाम, आपकी भी फरमाइश मैंने नोट कर ली है, पूरी करने की भरपूर कोशिश करेंगे। तबस्सुम हमें सुन रही है, तबस्सुम बहुत बहुत शुक्रिया सुनने और पसंद करने के लिए, वालेकुम अस्सलाम। इमरान हमें सुन रहे हैं, इमरान थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी एंड वालेकुम अस्सलाम। अदील हमें सुन रहे हैं, अदील बहुत बहुत शुक्रिया सुनने और पसंद करने के लिए, थैंक यू सो मच। और इनाम हमें सुन रहे हैं, इनाम वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया सुनने और पसंद करने के लिए। आप सभी फरमाइशें मुझ तक पहुंचती रहती हैं और मैं आपकी फरमाइशों को वक्तन फवक्तन पूरा करता रहता हूं और ये यकीनन मेरी ड्यूटी में शामिल है और मेरे फराइज में शामिल है कि आप जब भी मुझसे फरमाइश करें मैं उन फरमाइश को पूरा करूं। तो मजीद फरमाइश के लिए अपने राइट मैसेज में जाइए, के एचआई लिखिए, स्पेस दीजिए, अपना मैसेज टाइप कीजिए, लिख भेजिए हमें 3666 पर। इसके साथ साथ facebook.com/rjmehfooz पर भी आप मुझे मैसेजेस कर सकते हैं, बता सकते हैं कि आपको कौन सा गाना सुनना है, मैं यहां आपके लिए मौजूद हूं। प्रोग्राम में शामिल करेंगे बहुत ही खूबसूरत सी आवाज जुनेद जमशेद।

0: जरा बहन जरा बात तो सुनो।
1: हटो पीछे, भागो।
2: अहमद हटो वहाँ से।
3: हादसे अचानक ही हुआ करते हैं, घबराए नहीं, समझदारी से काम ले। सबसे पहले कुत्ते के काटे जख्म को 20 मिनट तक साफ पानी और आम साबुन से धोएं। इसके बाद करीबी अस्पताल जाकर डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाएं। करीबी एंटी रेबीज सेंटर की मालूमात के लिए 1122 पर राबिता करें। महकमा सेहत, हुकूमत सिंध।
4: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले। 100 FM।
5: छम छम छम किताबे लेके निकले हम, अम्मी ने कहा ना रुकना तुम, रोज रोज आगे।

0: You are listening to Music Masti.
1: जी बिल्कुल, आप सुन रहे हैं म्यूजिक मस्ती और मुझे कहते हैं महफूज। बहुत ही खूबसूरत सा गाना आपने एंजॉय किया और वक्त यही से गुजरता जा रहा है। हमारी कोशिश यही होती है कि हम आपको इस दो घंटे में ज्यादा से ज्यादा खूबसूरत सी म्यूजिक सुनवाएं और आपको एंटरटेन करें। और एंटरटेनमेंट का सबसे बेहतरीन तरीका FM 100 पाकिस्तान पर जबरदस्त सी म्यूजिक है, वो गाने जो आप कहीं नहीं सुनते, FM 100 पाकिस्तान आपको यकीनन सुनवाता है। एक और खूबसूरत से गाने की तरफ आपको हम लेकर चलेंगे। आप ही की फरमाइश है और आज आप ही की फरमाइश मैं बहुत तेजी से पूरी कर रहा हूं।

0: You are listening. You are listening. Music. Masti. Masti. Masti.
1: Azra behen, zara baat to suno. Hatu piche. Bhago. Ahmed, hatu wahan se.
2: हादसे अचानक ही हुआ करते हैं, घबराए नहीं, समझदारी से काम लें। सबसे पहले कुत्ते के काटे जख्म को 20 मिनट तक साफ पानी और आम साबुन से धोएं। इसके बाद करीबी अस्पताल जाकर डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाएं। करीबी एंटी रेबीज सेंटर की मालूमात के लिए 1122 पर राबिता करें। महकमा सेहत, हुकूमत सिंध।
3: डेंगू एक खतरनाक बीमारी है जो मच्छर के काटने से फैलती है। सुबह सूरज निकलने के बाद और शाम सूरज गुरूब होने से पहले ये मच्छर आपको काट सकता है। अगर आपको अचानक तेज बुखार, शदीद सर दर्द, जिस्म और जोड़ों में दर्द, मतली या कमजोरी महसूस हो तो फौरन डॉक्टर से रुजू करें। डेंगू का मच्छर साफ पानी में पैदा होता है, इसलिए घर और इर्द गिर्द कहीं भी पानी जमा न होने दें। पानी की टैंकियों को ढांप कर रखें, गमलों और कूलर का पानी बाकायदगी से तब्दील करें, लंबी आस्तीन वाले कपड़े पहनें, मच्छर मार स्प्रे और मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। याद रखें, एहतियात ही डेंगू से बचाव का बेहतरीन तरीका है। डेंगू से बचाओ, आपकी एहतियात, आपकी हिफाजत।
4: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
5: Like us on facebook.com/fm247365.
0: FM247365. You are listening. You are listening. Music. Masti. Masti. Masti.
6: जी मेरे दोस्तों, आप सुन रहे हैं म्यूजिक मस्ती, मुझे कहते हैं महफूज। आपके मैसेजेस की बारी है, हम पढ़ने लगे हैं आपके मैसेजेस। शाकिर अली में मैसेज करें, सलाम करें, वालेकुम अस्सलाम, पहली मरतबा सुन रहे हैं, आपको खुश आमदीद कहेंगे। मैमून हमें सुन रही है, वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी भी फरमाइश मैंने नोट कर ली है। असलम हमें सुन रहे हैं, पहली मरतबा सुन रहे हैं, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी, आपकी भी फरमाइश मैंने नोट कर ली है। सैयद ताहिर हमें सुन रहे हैं, ताहिर बहुत बहुत शुक्रिया सुनने और पसंद करने के लिए, आपकी भी फरमाइश मैंने नोट कर ली है, बहुत बहुत शुक्रिया। जुसरा हमें सुन रहे हैं, जुसरा वालेकुम सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया सुनने और पसंद करने के लिए, आपकी फरमाइश मैंने नोट कर ली है और यकीन पूरी करने की हम कोशिश करेंगे। अली हमें मैसेज कर रहे हैं और सलाम कह रहे हैं और आपकी फरमाइश हमने नोट कर ली है। अनवर अली ने मैसेज किया, सलाम का वालेकुम असलाम, बहुत बहुत शुक्रिया सुनने और पसंद करने के लिए। महम हमें सुन रही है, महम बहुत बहुत शुक्रिया सुनने और पसंद करने के लिए, थैंक यू सो मच, आपकी फरमाइश मैंने नोट कर ली है। अफशा हमें सुन रही है, अफशा थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी एंड वालेकुम असलाम, आपकी फरमाइश नोट कर ली है, पूरी करने की भरपूर कोशिश करेंगे। और नईम हमें सुन रही है, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। प्रोग्राम में शामिल करेंगे एक और खूबसूरत सा गाना आप सबकी फरमाइश पर।

0: You are listening. Music. Masti.
1: जी मेरे दोस्तों, अब वो वक्त आन पहुंचा है कि जब हम आपसे अल्लाह हाफिज कहें, आपसे अलविदा लें। लेकिन आज का शो और आज की म्यूजिक आपको पसंद आई होगी, आप मुझे जरूर बताया करें। बहुत सारे लोगों ने मैसेजेस किए, उनका शुक्रिया। जिन्होंने नहीं भी किए उनका शुक्रिया कि आप सुनते तो हैं, हमारे डेडिकेटेड लिसनर हैं। सुनना बहुत ज्यादा जरूरी है। जाते जाते हमेशा की तरह वही दुआ, जहां रहें खुश रहें, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें, दूसरों को रखें खुश, बड़ों का करें अदब, छोटों से करें प्यार, अपने वतन का अपने परचम का करें एहतराम। और जब दुआ के लिए हाथ उठाएं, महफूज को एफएम 100 पाकिस्तान को रखें अपनी दुआओं में जरूर जरूर जरूर जरूर याद। अगर आपके वालिदैन हयात हैं, उनसे मोहब्बत कीजिए, उनकी खिदमत कीजिए, क्योंकि दुनिया में यही आपकी जन्नत है, ऊपर जन्नत का वसीला। मेहरबानों के बुला लो मुझे चाहो जिस वक्त, मैं गया वक्त नहीं हूं कि फिर आ भी ना सकूं। इंशाल्लाह जिंदगी रही तो आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट संडे दोपहर 3 बजे। जाते जाते एक बहुत ही खूबसूरत सा गाना आपकी समातों की नजर करेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड फाइनली अल्लाह हाफिज़।

0: FM 100's time check. It's 5 p.m.
1: जरा बहन, जरा बात तो सुनो। हटो पीछे, भागो। अहमद, हटो वहां से।
2: हादसे अचानक ही हुआ करते हैं, घबराए नहीं, समझदारी से काम लें। सबसे पहले कुत्ते के काटे जख्म को 20 मिनट तक साफ पानी और आम साबुन से धोएं। इसके बाद करीबी अस्पताल जाकर डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाएं। करीबी एंटी रेबीज सेंटर की मालूमात के लिए 1122 पर राबिता करें। महकमा सेहत, हुकूमत सिंध।
3: ब्रांड न्यू सुजुकी ऑल्टो जीतना चाहते हैं? बस अपने इजी पैसा अकाउंट में 15,000 रूपए या उससे ज्यादा डिपॉजिट करें, बैलेंस 20 दिन तक मेंटेन करें और लकी ड्रॉ में 4 सुजुकी ऑल्टो या 50,000 के 100 कैश प्राइजेस जीतने का मौका पाएं। तो इंतजार किस बात का, अभी डिपॉजिट करें और जीतें। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
4: जब बात आपकी सेहत की हो तो खालिस्तान बहुत अहमियत रखता है। शोबे मयार की सख्त जांच पड़ताल करता है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हर दवा असली और काबिल भरोसा हो। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शोबे जर्मनी, पिछले 75 सालों से सेहतमंद पाकिस्तान के लिए कोशां।
5: स्टेप स्कूल से फाउंडेशन हो स्ट्रॉन्ग। स्टेप स्कूल्स दे रहा है मॉडर्न न्यू एज एजुकेशन विच विल प्रिपेयर योर चाइल्ड इन बिकमिंग अ फ्यूचर लीडर। एडमिशंस ओपन। फॉर मोर डिटेल्स कॉल नाउ एट 03111117837।
6: सर सब नाइट्रोफॉस की बोरी पे लगा 9 हिस्सों का स्टिकर कोड अपने नाम और इलाके के साथ 03003641 पर भेजें या सर सब पाकिस्तान ऐप के जरिए अपनी एंट्री रजिस्टर करवाएं और मौका पाएं उम्र टिकट, मोटरसाइकिल और मोबाइल फोन जैसे ढेरों इनामात जीतने का। एंट्री भेजने के बाद बोरी और स्टिकर संभाल के रखें। मजीद मालूमात के लिए सर सब हेल्पलाइन पर कॉल करें। तो सर सब नाइट्रोफॉस को लगा और जीत ताजा।
7: आज सुबह किसी का व्हाट्सएप और किसी का बैंक अकाउंट हैक हो गया और कहीं एक बिजनेस साइबर अटैक का शिकार बन गया। साइबर अटैक सिर्फ सिस्टम्स को नहीं, जिंदगियों को भी टारगेट करते हैं। इसीलिए इग्नाइट अंडर मिनिस्ट्री ऑफ आईटी एंड टेलीकॉम ब्रिंग्स यू द 5th डिजिटल पाकिस्तान साइबर सिक्योरिटी हैकाथॉन। हैंड्स ऑन वर्कशॉप्स, रेड एंड ब्लू टीमिंग कॉम्पिटिशन्स। अगर आप स्टूडेंट हैं, साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल या एथिकल हैकर, पाकिस्तान के अगले साइबर डिफेंडर बनिए। Register now at cyberhackathon.pk.
8: Shaukat Khanam, Lahore aur Peshawar ke baad aapki ek aur donation.
9: Shaukat Khanam, Karachi ki takmeel.
10: Aaj hi donate karne ke liye 0800-11555 par call karein ya hamari website www.shaukatkhanam.org.pk visit karein.
11: Pakistan is building a safer, smarter digital ecosystem, and we need your talent. Step up, build a cyber-safe life, and unlock premier careers in cybersecurity at the 5th Digital Pakistan Cybersecurity Hackathon. Organized by Ignite under the Ministry of IT and Telecom, join hands-on training workshops in 16 cities and secure your future. Registrations are open now at cyberhackathon.pk.

0: अफा और सल्फर नाइट्रोजन की आफादियत को बढ़ाए, जिससे फसल को इब्तदाई मरहले से ही जरूरी गजाई अज्जा मिले। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुँचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। तीन की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
1: This program is brought to you by
2: Phoenix laga aur bhul ja, Phoenix laga aur bhul ja,
3: and Sarsaps Nitro Foss ko laga aur jeetta ja.
4: कहीं अनजाने में आप दहशत गर्दों की माली मुआवनत तो नहीं कर रहे? होशियार रहें, मोहतात रहें। अपना बैंक अकाउंट किसी दूसरे फर्द को हरगिज इस्तेमाल न करने दें और न ही किसी अनजान अकाउंट में रकम मुंतकिल करें। हुंडी, हवाला या बैंक अकाउंट के जरिए दहशत गर्दों की माली मुआवनत करने वाले अफराद के खिलाफ इंसदाद दहशत गर्दी एक्ट के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई का आगाज हो चुका है। याद रखें, दहशत गर्दों की माली मुआवनत भी दहशत गर्दी है। हुकूमत पाकिस्तान।
5: मुफाद आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया।
6: 31 years of memories, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
7: Assalamu alaikum Pakistan. Let's celebrate the journey.

पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसमें मौजूद फास्फोरस ने जड़ों की बढ़ोतरी और फैलाव में

0: की स्पेशल क्वालिटी सोप और सेवैया।
1: हुर्मत रसूल का तकाजा है कि तौहीन रिसालत से मुतालिक किसी भी खबर को बिना किसी तस्दीक के ना फैलाएं। ये पैगाम मुफादियामा के लिए वजारत इत्तिलात और नशरियात व कौमी विरसा और FM 100 की जानिब से पेश किया गया।
2: 100 FM।
1: कुरानी आयात और अहदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहतराम हम सब पर फर्ज है। ताज़ीरात पाकिस्तान के सेक्शन 295B के तहत कुरान पाक की तौहीन काबिले सजा जुर्म है, जिस पर उम्र कैद की सजा हो सकती है। इसको गंदगी या रद्दी में ना फेंका जाए। ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 की जानिब से पेश किया गया।
3: महराना देखभाल में फितरत परवान चढ़ती है। शॉबिंग सिंगल रेमेडीज मखसूस हर्बल फार्म्स और नबताती बागा से हासिल की जाती हैं, ताकि आपको ऐसा मयार मिले जिस पर आप मुकम्मल भरोसा कर सकें। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शॉबे जर्मनी के पाकिस्तान में 75 साल सिर्फ सेहतमंद पाकिस्तान के नाम।

0: अजरा बहन जरा बात तो सुनो, हटो पीछे, भागो।
1: अहमद हटो वहाँ से।
2: हादसे अचानक ही हुआ करते हैं, घबराए नहीं, समझदारी से काम लें। सबसे पहले कुत्ते के काटे जख्म को 20 मिनट तक साफ पानी और आम साबुन से धोएं। इसके बाद करीबी अस्पताल जाकर डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाएं। करीबी एंटी रेबीज सेंटर की मालूमात के लिए 1122 पर राबिता करें। महकमा सेहत, हुकूमत सिंध।
3: ब्रांड न्यू सुजुकी ऑल्टो जीतना चाहते हैं? बस अपने इजी पैसा अकाउंट में 15,000 रूपए या उससे ज्यादा डिपॉजिट करें, बैलेंस 20 दिन तक मेंटेन करें और लकी ड्रॉ में 4 सुजुकी ऑल्टो या 50,000 के 100 कैश प्राइजेस जीतने का मौका पाएं। तो इंतजार किस बात का, अभी डिपॉजिट करें और जीते। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
4: आम चीजों पर समझौता क्यों करें? शॉबे सिंगल रेमेडीज मुस्तनद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन अज्जा लाए हैं ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शॉबे सिंगल रेमेडीज, भरोसे देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल।
5: स्टेप स्कूल से फाउंडेशन हो स्ट्रॉन्ग। स्टेप स्कूल दे रहा है मॉडर्न न्यू एज एजुकेशन विच विल प्रिपेयर योर चाइल्ड इन बिकमिंग अ फ्यूचर लीडर। एडमिशंस ओपन, फॉर मोर डिटेल्स कॉल नाउ एट 03111117837।
6: सर सब नाइट्रोफॉस की बोरी पे लगा 9 हिस्सों का स्टिकर कोड अपने नाम और इलाके के साथ 03003641 पर भेजे या सर सब पाकिस्तान ऐप के जरिए अपनी एंट्री रजिस्टर करवाएं और मौका पाएं उम्र टिकट, मोटरसाइकिल और मोबाइल फोन जैसे ढेरों इनामात जीतने का। एंट्री भेजने के बाद बोरी और स्टिकर संभाल के रखें। मजीद मालूमात के लिए सर सब हेल्पलाइन पर कॉल करें। तो सर सब नाइट्रोफॉस को लगा और जीत ताजा।
7: किसने कहा था पैसे

0: It's 5:45 PM. This time check is brought to you by Phoenix Batteries. Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul
1: ja. Azra behen, zara baat to suno. Hatu piche, bhago. Ahmed, hatu wahan se. हादसे अचानक ही हुआ करते हैं, घबराए नहीं, समझदारी से काम लें। सबसे पहले कुत्ते के काटे जख्म को 20 मिनट तक साफ पानी और आम साबुन से धोएं। इसके बाद करीबी अस्पताल जाकर डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाएं। करीबी एंटी रेबीज सेंटर की मालूमात के लिए 1122 पर राबिता करें। महकमा सेहत, हुकूमत सिंध।

0: FM 100's time check. It's 6 p.m.
1: जरा बहन, जरा बात तो सुनो। हटो पीछे, भागो।
2: अहमद, हटो वहां से।
3: हादसे अचानक ही हुआ करते हैं, घबराए नहीं, समझदारी से काम ले। सबसे पहले कुत्ते के काटे जख्म को 20 मिनट तक साफ पानी और आम साबुन से धोएं। इसके बाद करीबी अस्पताल जाकर डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाएं। करीबी एंटी रेबीज सेंटर की मालूमात के लिए 1122 पर राबिता करें। महकमा सेहत, हुकूमत सिंध।
4: खालिस अज्जा, भरोसेमंद शिफा, श्वाबे सिंगल रेमेडीज कुदरत के बेहतरीन अज्जा से तैयार की गई हैं, क्योंकि आपकी सेहत इससे कम की हकदार नहीं। डॉक्टर हमीद जनरल होम्यो और श्वाबे सिंगल रेमेडीज 75 सालों से पाकिस्तान में नस्लों का भरोसा।
5: ब्रांड न्यू सुजुकी ऑल्टो जीतना चाहते हैं? बस अपने इजी पैसा अकाउंट में 15,000 रुपए या उससे ज्यादा डिपॉजिट करें, बैलेंस 20 दिन तक मेंटेन करें और लकी ड्रॉ में 4 सुजुकी ऑल्टो या 50,000 के 100 कैश प्राइजेस जीतने का मौका पाएं। तो इंतजार किस बात का, अभी डिपॉजिट करें और जीतें। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
6: स्टेप स्कूल से फाउंडेशन हो स्ट्रॉन्ग। स्टेप स्कूल्स दे रहा है मॉडर्न न्यू एज एजुकेशन व्हिच विल प्रिपेयर योर चाइल्ड इन बिकमिंग अ फ्यूचर लीडर। एडमिशंस ओपन। फॉर मोर डिटेल्स कॉल नाउ एट 03111117837।
7: फोन अपग्रेड करने का सोच रहे हो तो सुनो, फोन हो तो 5G वाला। मिलेगा कैसे? बस जैज एक्सपीरियंस सेंटर या जैज ई स्टोर पर जाओ और नया 5G वाला फोन अपना बनाओ। यही नहीं, फुल पेमेंट पर पाओ साथ में फ्री डेटा बंडल्स, हैंडसेट इंश्योरेंस और बहुत कुछ। तो फिर फोन हो तो 5G वाला, जैज 5G।
8: शौकत खानम, लाहौर और पेशावर के बाद आपकी एक और डोनेशन।
9: शौकत खानम, कराची की तकदीर।
10: आज ही डोनेट करने के लिए 08001155 पर कॉल करें या हमारी वेबसाइट www.shaukatkhanam.org.pk विजिट करें।

0: It's 6:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: जब बात आपकी सेहत की हो तो खालिस्पन बहुत अहमियत रखता है। शोबे मयार की सख्त जांच पड़ताल करता है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हर दवा असली और काबिल भरोसा हो। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शोबे जर्मनी पिछले 75 सालों से सेहतमंद पाकिस्तान के लिए कोशां।
0: This program is brought to you by and सरसब्ज नाइट्रोफॉस को लगा और जीतता जा।
2: Us on facebook.com/fm247365
3: fm247365 back to back only music no RJ talk on only music

दर्द से भरी मेरी ये कहानी है ना, बात करनी ना तुझको सुनानी। सोचो कभी मैं ये किसे कहूँ, आता नहीं मेरे दिल को सुकून। दुनिया झूठी, दुनिया वाले है fake, उनके बारे में मेरा है take। I don't care what you think, what you remember.

닭 사게야 얼추 포게야 왜 닭 사게야 얼추 포게야 왜 닭 사게야 얼추 포게야

0: Soapy Special Quality Soap aur Sevaiyan.
1: Karachi, Lahore, Islamabad, Hyderabad, Rahim Yar Khan, Multan, Abbottabad, Gujarat, Jhelum. Across Pakistan, this is FM 100.
2: Assalamu alaikum, Pakistan.
3: कोहेतूर पर गूंजती मूसा की ये सदा है, जो हर शय में नजर आए बस वो ही खुदा है।